0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

आदिगुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी के आधार पर सायंकालीन संत प्रवचन जो प्रेमपुरी आश्रम आयोजित है, इसका आज 9वां दिन, 10 दिन का यह कार्यक्रम कल अंतिम है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर है 64, वक्षस्ताणनमन्तकस्य कठिना पस्मारसम्मर्दनम् भूभृत्पर्यटनम् नमत् सुरशिरः। कोटीर संघर्षणम्

किसी का पति मर जाता है तो पत्नी कहती है कि कैसा कठोर है, किसी का बेटा मर जाता है तो मां कहती है कि यमराज कैसा कठोर है, किसी का बाप किसी की मां मर जाती है तो कहते हैं लोग यमराज कैसा कठोर है, कठोर दिल वाला है ना। इतने से छोटे से बच्चों को अनाथ छोड़कर जानते हुए भी है उन बच्चों को अनाथ बनाकर उसकी मां को ले गया, कैसा कठोर दिल वाला है, कहते हैं कि नहीं। इसलिए सबसे कठोर व्यक्ति है तो यमराज है भाई। और यही कारण है कि आज तक उसके छाती में किसी ने लात मारने की हिम्मत नहीं की है, की है किसी ने साहस किया उसके छाती पर लात मारने का, और वो काम आपने किया है। किसने? शिवजी ने कहा किया है भाई। विचार करो कि उनके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा, हम लोग बचपन में ये दिवाली के बाद भैया दूज आता है ना, भैया दूज के दिन बहन भाई को टीका लगाती है, बहन अपने भाई को टीका लगाती है, उसी को भैया दूज कहते हैं। और पहाड़ में ये चलन है, ये संस्कृति है कि टिक्का लगाने से पहले अच्छी तरह नहा लो, फिर सरसों का तेल शरीर में लगाओ, फिर उसके बाद टिक्का लगाओ। टिक्का लगाने के बाद खाने के लिए कई चीज बहन देती है, उनमें से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अनिवार्य देना ही पड़ता है उस दिन, वह है अखरोट, समझे नहीं? उसका नाम है अखरोट, अखरोट तो जानते हो ना। अब वो अखरोट भी आजकल जो आपके यहां आता है ना, वो तो बहुत सॉफ्ट अखरोट आता है, उसके छिलके बहुत नरम होते हैं, हाथ से दबाओ तो भी मूंगफली की तरह फूट जाता है। और पहाड़ में फलने वाला जो अखरोट है, लोकल अखरोट, वो तो इतने मोटे छिलके होते हैं और इतने कठिन होते हैं, तो बहन जब टिक्का लगाने के बाद अखरोट देती है कि इसको फोड़ के खाओ, तो हम लोग अखरोट फोड़ने के लिए इतने परेशान होते थे, फूटता ही नहीं था, पत्थर के ऊपर रखा और दूसरा पत्थर मारा तो वो छिटक के चला जाए, कहां पहुंच जाए, फूटे ही नहीं, क्योंकि एक तो हाथ में तेल लगाया हुआ होता है, तेल भी उसमें होता है, तो वो इतना चिकना हो जाता है, मारे पत्थर छिटक के चला जाए, फिर खोज खाज कर लाया, फिर पत्थर के ऊपर रखा, दूसरा पत्थर मारा, फिर छिटक गया उधर। बड़ी मेहनत से उसको कदाचित फोड़ भी लो तो लोकल अखरोट के अंदर जो खाने की चीज है ना, वो नहीं के बराबर ही होती है, और वह भी इतना उसमें फंसा हुआ होता है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, तो ऐसे निकलता नहीं है। फिर एक तिनका ले लेते थे, सुई ले लेते थे, उसको निकाल के खाओ, हे भगवान मुसीबत ही है। उस कठोर जो अखरोट है उसका, उससे भी ज्यादा कठोर तो यमराज का दिल है, छाती है भाई।
और ऐसे यमराज के छाती पर हे शिव आपने ही लात मारी है और किसी ने लात नहीं मारा है। वक्षस्ताडनम अंतकस्य, अंतकः माने यमराज, अंतम करोति इति अंतकः, सभी के जीवन को अंत करने वाला होने से यमराज का नाम है अंतक। उस अंतक के हृदय में लात मारी है भगवान शिव ने, बस और किसी ने नहीं मारा आज तक इतिहास में। पुराण में प्रसंग आता है, मार्कंडेय ऋषि थे, मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय, बचपन में बड़े खेलने में मस्त थे वो, जैसे हम लोग खेलते रहे उसी तरह वो भी खेलने में मस्त थे। एक बार नारद जी घूमते हुए गए और जाकर मार्कंडेय ऋषि को कहा, ए क्या करता है, खेलता रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले और क्या करना है, ये जीवन बचपन का जीवन खेलने के लिए तो है, खाने के लिए तो है, खूब खेलो और खूब खाओ, खूब खाओ और खूब खेलो। अरे शादी विवाह हो जाने के बाद न खाने को मिलेगा न खेलने को मिलेगा है? शादी के बाद तो खेलने को मिलेगा हाँ, रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को थोड़ा हंसने की बात कर देता हूं भाई है? कहते हैं एक माता पिता थे, उसकी एक लड़की थी, ये हंसने की बात है, जवान हो गई, माता पिता को अपने कन्या प्रति चिंता हो गई कि इसके समय में शादी कर देना चाहिए। लड़की की मां ने कहा उसके पिता को कि अरे सुनो हमारी बेटी अब जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर देना चाहिए भाई समय में ही, जमाना खराब है, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं क्या हो जाए कब, इसलिए समय में ही शादी कर देनी चाहिए। बोले ठीक कहा तुमने, कर देनी चाहिए, इसके लिए कोई योग्य पति वर खोजना पड़ेगा भाई। बोले चलो खोजते हैं। उस कन्या के दोनों माता पिता कन्या के लिए वर खोजने के लिए गए, पहले एक गांव में गए, एक लड़का था उस गांव में, उसको देखा, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य था। अब उसकी लड़की थोड़ी पढ़े लिखे की थी, कहा कि हमारी बेटी थोड़ी पढ़े लिखी है, तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, काम नहीं बनेगा, छोड़ दिया। दूसरे गांव गए, वहां एक लड़का मिला, उसको देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो था, उसके लड़के

0: काले से क्या ब्याह करना है, चलो छोड़ दो। फिर तीसरे गांव गए, वहां गए तो लड़का ठीक था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, लेकिन बहुत गरीब था। तो ऐसे को लड़की देंगे तो पालेगा कैसे?
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शाइवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमा, प्रेजेंटेड बाय स्वामी संतोषी माताजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: बोले, यम के दूत जैसे उनके निकट आए उन्हें लेने के लिए, दो देवों से बड़ा डर लगता है नारा। यम का नाम सुनते भी बड़ा भय लगता है और शनि का नाम सुनते भी बड़ा भय लगता है। जीवित जिंदे जी सताने वाले डराने वाले देवता कौन है? बोले शनि देव है। शनि के नाम पर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। अच्छा, शनि। और दूसरा मरणोत्तर, मरने के बाद यम। यम कहते ही बड़ा हमें डर लगता है। जानते हैं ये दोनों के देवता कौन है? ये दोनों है सूर्य पुत्र। सूर्य के पुत्र का नाम यमराज है और सूर्य के पुत्र का नाम शनि है। एक जीते जी डराता है, एक मरने के बाद डराता है। एक मरने के बाद भय दे और एक जीते जी भय दे। इन दोनों के भय से, यम के भय से और शनि के भय से बचने के लिए हमें कौन से देव की शरण लेनी चाहिए? बोले, इनके जो पिता हैं वो कौन है? भगवान सूर्य देव, भगवान सूर्य नारायण, अर्थात सूर्य देव बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि के देव हैं सूर्य। और सूर्य स्वयं कौन है? बोले, भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव का ही नाम है, इसीलिए भगवान शिव का अभिषेक करते समय और कुछ नहीं बोल सकते हो तो केवल इतना तो बोल लो, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनिश्च राहुश्च सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इतना कहकर केवल एक लोटा भगवान शंकर में जल ही चढ़ा दो। अलग अलग नौ ग्रह को कहाँ कहाँ पूजते रहोगे, किस किस की सेवा करते रहोगे? इसलिए कुछ नहीं करो, केवल एक लोटा जल लेकर के भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हुए, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर चढ़ाते हैं अथवा ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाते हो, तो कम से कम इतना कर दो कि इन नौ ग्रहों का नाम लेकर एक लोटा जल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दोगे तो, क्योंकि भगवान शिव से बढ़कर के और कोई देव नहीं है। भगवान शंकर के आगे पीछे सर्वे ग्रह, ये ग्रह ऐसे हैं ना, एक बार शनिदेव ने सोचा कि जाकर मैं शंकर जी को के ऊपर अपना प्रभाव दिखाऊंगा। सब देवों पर शनि ने अपना प्रभाव डाला, सबको दुखी कर दिया। यहां तक कि शनि ने सूर्य और चंद्र को भी नहीं छोड़ा, स्वयं अपने पिता सूर्य को भी नहीं छोड़ा, जिसके कारण सूर्य में भी ग्रहण आता है। तो सोचा, चलो शंकर जी के ऊपर भी मैं अपना प्रभाव दिखाऊं। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव को तो मालूम था कि शनि आने वाले हैं। तो शंकर जी के मन में विचार हुआ और भगवान शिव के अंदर तप करने की इच्छा जागी और उन्होंने नंदीश्वर को कहा, तुम थोड़ा जाओ जंगल में घास वास चरो। नंदीश्वर को छोड़ दिया और आगे बढ़े भगवान शिव। तो जो मस्तक में चंद्रमा थे उनको भी कहा कि जाकर थोड़ी दिन समुद्र में रह करके आओ, तुम्हारे पिता के पास समुद्र के पुत्र हैं, कहा जाकर समुद्र में रहकर आओ, मिलकर आओ उनको।

0: उनके पिता के पास भेज दिया और आगे बढ़े। शेष जी को कहा कि तुम भी जाकर थोड़ा आराम करो, शेष जी का भी त्याग कर दिया। पंचतरणी में गए तो पंच तत्वों को छोड़ दिया और संगम में गए गंगा आदि नदियों को छोड़ दिया और भगवान शिव भगवती शिवा को हिमालय के पास भेज करके बिल्कुल अकेले होकर शंकर जी बैठ गए ध्यानस्थ। तो इतने में शनि का आने का समय हुआ और आकर सामने खड़े हो गए। तो भगवान शिव ने कहा तुम आए हो? हाँ महाराज मैं आ गया हूँ। तो मैं आ गया हूँ तो आए हो तो जिसके लिए आए हो वो करो। कहा प्रभु जो मैं आकर के करता वो तो आपने पहले अपने आप ही कर दिया, इसलिए आपके चरणों में खोटी खोटी प्रणाम है। मैं आकर ज्यादा से ज्यादा क्या करता? कोई भी ग्रह आएगा शनि आएगा तो क्या करेगा? प्रियजनों को अलग कर देगा। जिनको तुम्हें हटाना था वो तो मैं पहले हटा चुका। शनिदेव जैसे आए थे वैसे लौट गए। तो जो ऐसे भगवान शिव की शरण में जाते हैं उनको कोई भी ग्रह दशा पीड़ित नहीं कर सकती है। ये सोम शनि शनिश्चर जो आदि ग्रहों से हम लोग दुखी रहते हैं ये तभी तक दुखी हैं जब तक हमने शिव की शरण नहीं ली है। अर्थात जो जन भगवान की शरण में चले गए हैं, शिवाश्रित हो गए हैं, शिव में भरोसा कर लिया है, शिव में विश्वास कर लिया है, विश्वास पर जिसने विश्वास कर लिया है, अपनी मति को उनके चरणों में दृढ़ कर ली है, एक आस एक विश्वास एक भरोसा, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है, और इस भरोसे के साथ जिसने भगवान शिव की चरण शरण पकड़ी है उन्हें कभी कोई ग्रह दशा व्यथित नहीं कर सकती है, पीड़ित नहीं कर सकती है, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए भगवान शिव की उपासना करते समय जरूर अवश्य में सभी ग्रहों को लेकर जल उन्हीं को चढ़ा देना चाहिए जिसमें सब शांत होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि भगवान शिव देवादि देव हैं और इनकी शरण जाने से सर्व दुखों को हरने वाले हर हर प्रहर प्रहर कहकर ये डाकू लोग दिन रात हर हर प्रहर प्रहर यही शब्द बोला करते थे। आगे का शब्द प्रहर सब प्रहर शब्द निकल गया, दोनों अक्षरों के पीछे हर हर शब्द है और इस हर हर शब्द से ही भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए। यम दूत जब लेने के लिए आए तो बोले वहां पर भगवान शिव के पार्षद पहुंच गए, शिव के गण पहुंच गए। उन्होंने यम दूतों को कहा ठहरो ठहरो, उन्हें रोक दिया। कहा महाराज ये तो आपके ले जाने के लायक नहीं है, इन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, लूटपाट किया है। शिव पार्षदों ने कहा, शिव गणों ने कहा नहीं नहीं, इन्होंने तो दिन रात हमारे स्वामी का भजन किया। बोले भजन कैसे किया है? ये तो हर हर कहते रहे, इनका मतलब था हर लो छीन लो छीन लो, प्रहार प्रहार इन पर प्रहार करो, इन्हें मार लो इन्हें मार लो, ये इनका आश्रय था। कहा नहीं नहीं, दोनों शब्दों के पीछे हर हर था, ये तो हर हर की शरण में गए अर्थात भगवान शंकर की शरण में गए हैं, इसलिए इन्हें आप नहीं ले जा सकते हैं। ये कहकर यम दूतों को हटा करके शिव पार्षद शिव गण उन्हें शिव लोक पहुंचा दिए और शिव लोक में जाकर के जहां जाकर उन्हें परम गति परम कल्याण की प्राप्ति हो गई। तो ये कथा शिव पुराण में आती है। भगवान शिव जो अनजाने से भगवान शिव का नाम ले लेते हैं उनकी ये गति उन्हें प्राप्त होती है। जो श्रद्धा विश्वास प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की शिव की महिमा को समझ करके जो भगवान के शिव के नाम का यश का कीर्तन करेंगे, उनके यश कीर्तन करते हैं अर्थात यश को गाते हैं, भगवान शिव के गुण को पहचान कर उनके गुणों का गान करते हैं, जिनके यश को सुन करके उनके नाम का कीर्तन करते हैं, उन भक्तों पर कभी कोई विपदा नहीं आ सकती है, कोई उन्हें वो सर्वापत्ति से छुड़ाने वाले भगवान शिव हैं। आपत्ति तभी तक है, विपत्ति तभी तक है जब तक भगवान का नाम हमसे विस्मृत है, हम भूले हुए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने अपने मन को शांत करके लिया है और समग्र इंद्रियों को का निरोध कर लिया है, इंद्रिय निग्रह को प्राप्त करके अपना चित शिवार्पित किया है, शिव के चरणों में लगाया है और शिव की भावना को अपने हृदय में भर लिया है, नेत्र से भगवान शिव की इस लीला महिमा को जगत को देखकर इसका सार रूप शिव को पहचान कर आनंद से जिसने वो नेत्रों से अपने हृदय में शिव भावना परिपूर्ण कर ली है, ऐसे निष्ठावान भक्त अपने चित्त की गति को निरंतर भगवान के चरणों में लगाए हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के नाम को शिव शिव कहते हुए, शिव शिव कहते कहते, शिव शिव रटते रटते, शिव शिव भजते भजते वो शिव गति को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात परम कल्याण की गति को प्राप्त कर जाते हैं, वो संसार के नाम भेद को लेकर भ्रमित नहीं होते हैं। शिव कहा तो बहुत से लोग केवल नाम के लिए कट्टरवादी हो जाते हैं। नारायण, एक बात ध्यान रखना, किसी एक नाम को, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कोई भी एक नाम, जब तो हमेशा एक ही नाम का करना चाहिए इसमें, क्योंकि जपाकार वृत्ति बनने के लिए बार बार, परंतु ये समझकर करना चाहिए जैसे स्वर्ण एक है, स्वर्ण के बने हुए आभूषण अनेक हैं, आभूषणों के रूप में, तत्व के रूप में स्वर्ण को पहचान कर आप सभी आभूषणों को पहचानते हैं, उसी तरह से अपने इष्ट अपने आराध्य को सर्व रूप में देखकर ये भेद नहीं रखना चाहिए। बहुत से वैष्णव इस बात का बड़ा भेद करते हैं कि शिव तो बड़े ही तामस देव हैं, इसलिए उनसे भेद करते हैं, उनका नाम लेना भी स्वीकार नहीं करते हैं, या अथवा ऐसा हम किसी नाम ले लेंगे तो अन्याश्रय हो जाएगा, यदि हम किसी का शिव के का नाम ले लेंगे अन्याश्रय हो जाएगा, उनका गुण सुन लेंगे अन्याश्रय हो जाएगा। बात ये नहीं है नारायण, बात तो ये है कि हमें भगवान शिव का अर्थात जो नाम स्मरण करते हैं उसी को सर्व रूपों में देखते हुए, तू ही कृष्ण है, तू ही राम है, तू ही नारायण है, तू ही सूर्य है, तू ही गणपति है, ऐसा समझ करके उस नाम को सर्व भाव में सर्वात्म भाव से उसे स्वीकार करना चाहिए। नारायण, सर्वात्म भाव की एक भावना ऐसी अपने निष्ठ के प्रति होनी चाहिए। महाराज उपमन्यु की कथा शिव पुराण में भी आती है और महाभारत में ये कथा बहुत विस्तार से बताई गई है। उपमन्यु नामक भगवान शिव के एक भक्त हुए, भगवान शिव की ये नित्य प्रति उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। महाराज उपमन्यु तप कर रहे थे, इनकी तपस्या को करते हुए देखकर इंद्र के मन में डाह पैदा हुई। इंद्र सोचने लगे, जब जब इस पृथ्वी पर कोई तपस्वी तप करता है तो इंद्र के मन को पीड़ा पहुंचती है, उसे बड़ी ईर्ष्या होती है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि देवताओं के अंदर भी ईर्ष्या और द्वेष की भावना है। इसलिए देवता भी ईर्ष्या और द्वेष से बचे हुए नहीं है। तब सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या। और जिसने इस ईर्ष्या और द्वेष के ऊपर, इस राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, एक बात गंभीरता से समझिएगा, तमाम अध्यात्म विद्या का अर्थ क्या है, जिसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, उपनिषद विद्या कहते हैं, आत्म विद्या कहते हैं, इस विद्या का मतलब क्या है? इस अध्यात्म विद्या का अर्थ है कि हमारे जीवन से राग और द्वेष की निवृत्ति हो जाए। बुद्धि में राग और द्वेष न रह जाए, बुद्धि से राग द्वेष को हम निकाल दें और बुद्धि को निष्पक्ष कर लें। जिस काल में बुद्धि निष्पक्ष हो जाएगी, उस काल में आप क्या होंगे? उस काल में आप केवल मनुष्य नहीं होंगे, मनुष्य से ऊपर देव नहीं होंगे। अर्थात उस समत्व बुद्धि को प्राप्त करके आप स्वयं भगवत स्वरूप होंगे, परमात्म स्वरूप होंगे। अर्थात आज आपके निज स्वरूप में आपकी स्थिति बनेगी। जब तक बुद्धि में लेश मात्र भी राग और द्वेष शेष रह जाएगा, तब तक हमारा जन्म मृत्यादि का ये जो बंधन है, ये समाप्त नहीं होगा नारायण। क्योंकि राग का काम है पकड़ना और द्वेष का काम है हटाना, दूर करना। तब तक हम पकड़ते रहेंगे, राग से पकड़कर हम समीप लाना चाहते हैं, द्वेष से हम उसे दूर फेंकना चाहते हैं। फेंकना, पकड़ना, उठाना और गिराना, ये क्रम हमारा चलता रहेगा। और इस कार्य को करने के लिए हमें तब तक जन्म लेने के लिए हमारे सामने व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि बुद्धि को निष्पक्ष कर लो। बुद्धि दोनों से निष्पक्ष हो, आखिर हो कैसे? इस बुद्धि में ऐसी स्थिरता कैसे आए? बुद्धि को स्थिर करने के लिए इस आत्मविद्या को धीरे धीरे सीखकर, और इस आत्मविद्या के जो स्वामी हैं, ज्ञानी के जो देव हैं, विशुद्ध ज्ञान देहाय अर्थात भगवान शिव, इस तत्व के परम देव हैं, बोले भगवान शिव के शरण में जाकर, भगवान शिव में मन को लगाकर, दिन रात जिज्ञासा से शिव शिव रटकर भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना कर, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षान देही। ये जो भिक्षा है ज्ञान वैराग्य की, वो तो उस मां शक्ति के शरण में प्राप्त होगी, जिस शक्ति से भगवान शिव ने ये विद्या प्राप्त की। नारायण महाराज उपमन्यु तप कर रहे हैं, इंद्र को द्वेष हो गया है, कहीं ये मेरा सिंहासन न छीन ले, मुझसे कहीं आगे न बढ़ जाए। और ये तो राजा थे, भगवान नारायण भी जब हिमालय में तप करते हैं तब भी इंद्र को द्वेष हो जाता है। जब जब जो कोई भी, चाहे वो देवता हो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो असुर हो जो कोई भी हो, जब जब वो तप करता है तब तब उसे देखकर इंद्र के मन में द्वेष होने लगता है कि कहीं ये तप से मेरा राज्य छीन न ले। इंद्र को भय हुआ और इस भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदला और वेश बदल करके जाकर इंद्र महाराज उपमन्यु के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के सामने खड़े हुए और कहा कि राजन बरम ब्रूई, और वरदान मांगने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि आप जो चाहे वो मेरे से वरदान मांग ले, परंतु महाराज उपमन्यु की निष्ठा थी, उन्हें तो भगवान शिव के अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं था। इंद्रदेव ने बहुत को विचलित नहीं हुए, महाराज तप करते रहे। अंतों को उनकी तपस्या और उनकी निष्ठा को देखकर जब उनके समक्ष इंद्र ने आकर के कहा कि आप मेरे से जो चाहे राज्य वो प्राप्त कर लें, तो महाराज उपमन्यु उनकी ओर देखकर कहते हैं अपि कीट पतंगो वा भवे शंकराज्ञा, मेरे प्रभु शिव की आज्ञा से मुझे कीड़ा बनना पड़े, पतंगा बनना पड़े, बार बार जन्मना मरना पड़े, वो सब कुछ मुझे स्वीकार है। जो भी बनाए वो बनने को मैं तैयार हूँ, जो कराए वो करने को मैं तैयार हूँ, जो मेरे शिव की मेरे लिए आज्ञा हो। मुझे शिवाज्ञा से, मेरी शिव की आज्ञा से मुझे जो भी करने को कहा जाए, जो भी बनने को कहा जाए, वो सब मुझे स्वीकार है। परंतु हे इंद्र, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे तीन लोक का अधिपत्य और आप इंद्र लोक भी, आप मुझे का सुख भी, वैभव भी मुझे देना चाहते हैं, तो मुझे आपके द्वारा मिले दिए हुए इस राज्य आदि से तनिक भी कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं किसी अन्य से कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ मेरे प्रभु शिव से चाहता हूँ। शिव के प्रति इस प्रकार की निष्ठा को देखकर तत्क्षण ही भगवान शिव वहाँ साक्षात रूप से महाराज उपमन्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी निष्ठा ये होती है। कैसी निष्ठा? बोले महाराज उपमन्यु जैसी निष्ठा। मुझे मेरे इष्ट की आज्ञा अनुसार मुझे जो कुछ बनना पड़े वो मुझे स्वीकार है, जो वो मुझसे कराए वो मैं करने को तैयार हूँ। भक्त से पूछा गया तुम क्या करोगे? जो भगवान कराएंगे। और कहाँ जाओगे? जहाँ मेरे भगवान ले जाएंगे। क्या देखोगे? जो हमारे भगवान दिखाएंगे। क्या सुनोगे? जो मेरे प्रभु मुझे सुना, यद्यत कर्म करोगे। मैं वो सब कुछ करूंगा। भक्त की कहीं किसी बात से नाई तो है ही नहीं, निराग्रही, उसका कोई अपना आग्रह नहीं है, उसकी कोई ऐसा होना ही चाहिए इस प्रकार का कोई उसके अंदर आग्रह नहीं है, अर्थात ऐसी कोई अकल नहीं है। उसमें इतना लचीलापन है, इतनी विनम्रता है, इतनी विनम्रता है। भक्त हमेशा विनम्र होते हैं। कठोरता जहाँ होती है वहाँ मृत्यु है। इसलिए आज तक सुना आपने कोई भक्त मर गया? कोई भक्त मरता है? मीरा मरी, सूर मरे, तुलसी मरे, नानक मरे, तुकाराम मरे, नामदेव मरे? भक्त कभी मरते नहीं है। बोले क्यों नहीं मरते? वो तो उनके अंदर इतनी विनम्रता है। मरते तो वो है जिनमें कठोरता होती है। एक बार एक संत से किसी ने जाकर पूछा, महाराज जी जरा आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए। महात्माओं से प्राय लोग जाते हैं, पूछते हैं महाराज कोई बात शुद्ध बता दो, कोई अनुभव सुना दो आपका कुछ जिससे हमें लाभ हो। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा, पूछने वाले से, भगत से कहा कि अच्छा बता, मेरे मुंह में दांत हैं। बूढ़े महात्मा थे, बहुत बुढ़े थे और आयु के प्रभाव से उनके सारे दांत मुंह के गिर गए थे। तो उन्होंने कहा तुझे मेरे मुंह में दांत दिखते हैं? बोले महाराज दांत तो नहीं है। अच्छा ये बता मेरे मुंह में जीव है? बोले हाँ जीव तो है महाराज। तो महात्मा कहते हैं तू इसी को मेरा अनुभव समझ ले। मतलब बात समझ में आई आपको? महात्मा ने कहा कि यही तू मुझे मेरा अनुभव समझ ले। बोले अनुभव क्या? कि यही अनुभव है, दांत मुख में रहते हैं पर कठोर होते हैं तो एक एक करके टूट के मर जाते हैं। जीव मुंह में रहती है, मुलायम रहती है तो वो कभी मरती नहीं है। तो जीवन में जिसमें कठोरता है, माने जिसमें अकड़ है, अकड़ने वाला मुर्दा होता है। अकड़ जिसके अंदर होती है, अभिमान जिसके अंदर होता है, अहंकार जिसके अंदर होता है वो तो मरता है। परंतु जो भक्त होते हैं, जैसे मुख में जीव विनम्र होकर रहती है, मुलायम होकर रहती है, उसी तरह से जो जीवन में विनम्र बन करके रहते हैं वो कभी मरते नहीं। विनम्रता आती है भक्ति से। जो जो भक्ति आपके अंदर, प्रेम आपके अंदर बढ़ेगा, अर्थात विनम्रता जीवन में कब कब आती है? जब जब आपकी बुद्धि से राग और द्वेष का आग्रह हटेगा। विनम्रता तो स्वाभाविक आपका स्वभाव है नारा, ये आपका विनम्रता लाना नहीं है। विनम्रता तो हमारे स्वभाव में है, परंतु जो चीज हमें स्वभाव से हमें प्राप्त है, कठोर होना ये हमारा अस्वभाव है और उस अस्वभाव को हमने पकड़ लिया हुआ है। शिव जो विनम्र हैं, अत्यंत सात्विक हैं, अर्थात वही तत्व शिव है, शिव ही निज आत्मा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। समग्र प्राणियों के हृदय में आत्म स्वरूपस्थ शिव को मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जीवन शिवमय बने और शिव तत्व को पहचान कर बुद्धि सात्विक बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, से चर्चा कल करेंगे।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shivam.org.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of shivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: तो ये उपाधि का परित्याग होगा तब न? जब तक उपाधि बनी रहेगी तो हम यही समझेंगे कि मैं तो ब्रह्म से अलग हूं, ब्रह्म सर्वज्ञ है और मैं अल्पज्ञ हूं, यही आज तक मान रहे हैं। तो वो उपाधि का निर्मोक करने के लिए ये मंत्र है। इस मंत्र में ये कहा गया है, इसलिए सबसे पहले कहा कि अदह पूर्णम। अदह यानी कि ये जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो पूर्णम है, जिसका अभी आपको चक्षुरादि इंद्रियों से, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो ब्रह्म। और वो ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों का विषय है ही नहीं, इसलिए यहां परोक्ष कहा। और परोक्ष होने से अदह शब्द का प्रयोग यहां पर किया। ऐसा जो अदह यानी परोक्ष ब्रह्म है वो पूर्णम है, वो अधूरा नहीं है। परोक्ष काल उनके लिए भी होता है जो बहुत पहले हो गए, उसके लिए जो है परोक्ष लिट लकार का प्रयोग होता है। अब यहां पर ये जो ब्रह्म है वो किसी को भी चक्षुरादि इंद्रियों से नहीं दिखता है, और पहले देखा भी नहीं और आगे संभावना भी नहीं है, इसलिए परोक्ष अर्थ में इसका प्रयोग किया अदस का। और ये है भी चक्षुरादि इंद्रियों का ये विषय नहीं है, इसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, यही ज्ञान है इसमें जो बताया जा रहा है वही ज्ञान, और वो ज्ञान रूपी चक्षु से ही वो परमात्मा का दर्शन संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूड नहीं देख सकता है, कौन देख सकता है तो कहा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो देख सकता है। ज्ञान चक्षु क्या कोई अलग से मिलती होगी क्या? तो नहीं, ये जो मंत्र का विचार, इस मंत्र में जो ज्ञान है वो ज्ञान रूपी चक्षु यदि जब हम पहन लेंगे तो हमको परमात्मा का दर्शन होगा, और अन्यत्र कहीं नहीं, हमारे ही अंदर अभेद रूप से ब्रह्मात्मे एकत्व रूप से होगा, ब्रह्मानुभव होगा। इसलिए देखिए उत्क्रमण कर रहे हैं, जब एक शरीर ये शरीर छोड़ करके जीवात्मा का उत्क्रमण होता है तब वो दिखता कहां से निकला किस जगह से, अब देख सकते मुमूर्षु व्यक्ति के पास आप खड़े हैं, और जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो निकलते हुए आत्मा को कोई देख नहीं सकता। उत्क्रामंतम नानुपश्यन्ति विमूढ़ः, उत्क्रामंतम आत्मनम विमूढ़ नानुपश्यन्ति, विमूढ़ नहीं देख सकता है। ठीक है उत्क्रमण की बात छोड़िए, उत्क्रमण तो जब आएगा तब की बात है, लेकिन इस समय स्थितम अभी हमारे अंदर है कि नहीं है, जी रहे न तो है, फिर भी कहां देख पाते हैं। स्थितम अपि विमूढ़ नानुपश्यन्ति, हमारे अंदर स्थित है फिर भी हम उसको नहीं देख सकते हैं, क्यों कि उससे मुख मोड़े हुए हैं। देखने के लिए हमारे पास ये इंद्रिया है, और हम यही मान बैठे हुए हैं कि जो इंद्रियों से दिखे उनको हम माने, इंद्रियों से न दिखे तो उनको हम नहीं मानते हैं। और ये जो अभी जो स्थित आत्मा है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, अवांग मनस गोचर है, इसलिए हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। भुंजानम वा, भोग करते हुए भी उनको हम नहीं देख सकते, कौन भोग कर रहा है पूछो तो कोई पता नहीं है, कर रहा है इतना पता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषयों का उपभोग कर रहा है इतना पता है, किंतु वो कौन कर रहा है वो पता नहीं है। ठीक है चलो वो भी ना दिखे, गुणान्वितम तो दिखे, गुण के साथ अन्वित जुड़ गया हुआ, गुण से अभिप्राय है त्रिगुणात्मक, ये जो देह उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए तो हम अहम अहम रूप से बोलते हैं किंतु देह के साथ संपृक्त होकर के बोलते हैं। स्पष्ट रूप से उनका अलग से देह से भिन्न रूप से उनकी प्रतीति नहीं हो रही है। क्यों? भगवान ने उत्तर दिया, विमूढ़ होने के कारण। अब तो क्या करना होगा? ज्ञान चक्षु को धारण करना होगा। यही ज्ञान चक्षु, इस मंत्र का हम विचार कर रहे हैं, ये क्या है? यही ज्ञान चक्षु है। जैसे समझ लो किसी को बिना चश्मे नहीं दिखता है, लिखा हुआ होने से भी चश्मा उतार दो तो नहीं दिखता, नहीं पढ़ पाता है वो। अब जैसे ही चश्मा को चढ़ाते हैं तो कहते हैं बिल्कुल मेरे को स्पष्ट दिख रहा है। दिखने में चश्मा माध्यम हुआ कि नहीं? वैसे ही अज्ञान अवस्था में, विमूढ़ अवस्था में आत्मा जो है स्पष्ट दिखता जरूर है, सामान्य ज्ञान तो हो ही रहा है, किंतु विशेष ज्ञान के लिए इसका विचार है। सामान्य ज्ञान तो सबको है ही है। सूत्र भाष्य में प्रश्न उठाया भगवान भाष्यकार ने कि ब्रह्म की जिज्ञासा तो बताई, ठीक है, किंतु वो ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? यदि प्रसिद्ध है, शंकराचार्य कहते हैं प्रसिद्ध है तब भी जिज्ञासा संभव नहीं है। अब जो चीज प्रसिद्ध है उनकी किसी को जिज्ञासा होगी? नहीं होगी। और जो रोज बार बार दिख रही है, सामने आ रही है, तो उसके विषय में हमको जिज्ञासा नहीं होगी, प्रसिद्ध है। और यदि अप्रसिद्ध है ऐसा कहेंगे तो कहते जो वस्तु अप्रसिद्ध ही है उनके विषय में भी जिज्ञासा नहीं होगी। जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, पाया नहीं, उसके विषय में किसी को जिज्ञासा होगी? नहीं होगी, अप्रसिद्ध। तो दोनों तरफ से ब्रह्म अजिज्ञास्य हुआ। भगवान भाष्यकार ने लिखा कि सामान्य ज्ञान है, सामान्य रूप से वो प्रसिद्ध है, और जिज्ञासा विशेष प्रति। सामान्य ज्ञान सबको है, विशेषम प्रति विप्रतिपत्ति है, ऐसा लिखा। विशेष के प्रति संदेह है। अब तो कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान से संसार की निवृत्ति हो जाती है, सामान्य ज्ञान तो सबको है तो क्यों नहीं हो रही है? सामान्य ज्ञान तो स्वीकार किया, सामान्य ज्ञान सबको है, तो फिर कहा गया कि सामान्य ज्ञान संसार का विरोधी नहीं है, किंतु जो विशेष ज्ञान है वो संसार का विरोधी है। विशेष ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए विशेष के विशेषण प्रति विप्रतिपत्ति है, विशेष के प्रति विप्रतिपत्ति है, इसलिए उनकी जिज्ञासा करनी है। इसलिए तब जब वेदांत का विचार करेंगे तभी विशेष ज्ञान संभव है। और वेदांत का विचार यही जो ये जो मंत्र है उस मंत्र में संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है। इसलिए कहा कि अधः पूर्णम, अधः यानी कि निरुपाधिकम, अथवा ये कीजिए जो परोक्षम, अथवा ये लीजिए तत्पदार्थ रूपम ब्रह्म। तत्पदार्थ, तत्पद का जो लक्ष्य वो पूर्णम यानी पूर्ण है। पूर्ण यानी कैसा? तो कहा आकाशवद व्यापी, आकाश के समान जो व्यापक है, जो व्यापक है वो पूर्ण है। और दृष्टांत बताया आकाश का, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम। जैसे आकाश है ना, वो सर्वगत है कि नहीं, वैसे ब्रह्म भी आकाश के समान सर्वगत है। भला इस संसार में कोई जगह ऐसी होगी जहां पर आकाश न हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सब आकाश से उत्पन्न हुए हैं ना, आकाश से वायु। तो आकाश वायु से अधिक देश में रहेगा ना, जो कार्य है वो न्यून देश में रहेगा। तो आकाश का वायु में अंतर्भाव हो जाता है, वायु न्यून देश में रहता है। और वायु से तेज उत्पन्न हुआ तो वो तेज वायु से कम देश में रहेगा। और तेज से जल उत्पन्न हुआ तो तेज है वो अधिक देश में रहेगा और जल न्यून देश में रहेगा। और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई तो जल है वो अधिक देश में और पृथ्वी न्यून देश में। और ये पांचों भूतों का ही जो है पंचीकरण, ये सारा संसार है। तो भला बताइए, जहां पृथ्वी होगी उसमें जल व्याप्त रहेगा, और जल है वो पृथ्वी जल में व्याप्त है, जल तेज में, तेज वायु में और वायु आकाश में। इसलिए आकाश है वो सब जगह है, आकाश के बिना कोई परमाणु भी खाली नहीं है। और आकाश किससे उत्पन्न हुआ बताओ? आत्मा से। एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। तो आकाश भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्रह्म जो है वो आकाश से भी व्यापक है। आकाश तो अभी जहां ब्रह्म है वहां न रहे, क्योंकि ये जो संपूर्ण संसार है पादोश्च सर्वाभूतानि, ब्रह्म के एक पाद में है, इसलिए सारे संसार में आकार ये ब्रह्म है वो व्यापक है। आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है वैसे ये ब्रह्म भी आकाश के समान व्यापी है। अथवा ऐसा कीजिए कि व्यापी न समझ में आए तो ऐसा सोचिए निरंतर है, जो जो पूर्ण का अर्थ है निरंतर, और निरंतर का अर्थ है जो नित्य है। निरंतर कैसे देखो, जो सभी देश में है, सभी अवस्था में है, सभी काल में है, उसको कहते हैं निरंतर या पूर्ण। देखिए ये जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का अनुभव जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्था में है, और भूतकाल में, भविष्यकाल में और वर्तमान काल में, तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में, तीनों शरीरों में जो निरंतर है, कभी उनका अभाव नहीं होता है। इसलिए पूर्ण का अर्थ हुआ निरंतर, आकाश के समान व्यापक, उसको कहते हैं पूर्ण। तो अभिप्राय हुआ पूर्ण मदह का अर्थ हुआ कि जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो आकाश के समान पूर्ण है और निरंतर है, उनका कहीं भी अभाव नहीं है। जो तीनों कालों में रहते हैं ना उनको ही सज्जनों सत कहते हैं, और जो तीनों कालों में न रहे उनको असत कहते हैं। सत वो है, पूर्ण वो है जिनका कहीं भी अभाव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंतः स्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। असत का कहीं भाव नहीं और सत का कहीं अभाव नहीं। इसलिए यहां पर ये जिसको कह रहे जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, वो सर्वत्र है, सभी पदार्थ के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है। चाहे कोई भी संसार का पदार्थ उठाइए, उसके अंदर इस परमात्मा की सद्रूप से प्रतीति होगी, सद्रूप से वो सर्वत्र विद्यमान है, वो दिखता नहीं है। और दिखता नहीं है वो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि वो प्रत्यक्ष होते हुए भी अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए कहते हैं नहीं दिखता है। अब यदि हार वेड मीटी को बताया जाए, जैसे ऐसे खड़ा करके कहा कि ये क्या है, तो कहेंगे चावी है ऐसा बोलेंगे, लोहा है ऐसा नहीं बोलेंगे। हार को ऐसे दिखाया जाए तो हम हार है ऐसा कहेंगे, सोना है ऐसा नहीं कहेंगे। और चक्षु का संयोग तो सोने के साथ ही हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? चक्षु का संयोग सोने के साथ हो रहा है, किंतु संस्कार हार का है, नाम और रूप का संस्कार है। इसलिए अस्थिभाति प्रिय का अनुभव होते हुए भी हम उसको नहीं कहते, नाम और रूप को यथार्थ मान करके चल रहे, इसलिए नाम और रूप को बता रहे, किंतु अस्थिभाति प्रिय जो सर्वत्र है उस ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। देखते हुए भी देखो, आप लोग ने जो कपड़े पहन रखे हैं तो कहेंगे बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, कहे कि कपड़ा पहन रखा है या सूत पहन रखा है तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कपड़े पहन रखे हैं। अब कपड़े में से सूत को निकाल दो तो कपड़ा नाम का कोई पदार्थ मिलेगा नहीं। जो सूत है उन्होंने कपड़ा का रूप धारण कर रखा है। इसी बात को ही वेदांत में कहा और यहां यही कह रहे, वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम। ये जो कपड़ा है वो केवल वाचारंभणम है। वाचारंभणम कहते हैं, भाष्यकार अर्थ करते हैं वाग आलंबन मात्रम, जो केवल वाणी के द्वारा बताया जा सके किंतु सिद्ध न किया जा सके उसको कहते हैं वाचारंभणम। आप कपड़े को ये कपड़ा ऐसा बोल सकते हैं लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। और सत वो है जिसको आप सिद्ध कर सके, कपड़े को सिद्ध नहीं कर सके। हम पूछे कि यहां कपड़ा कहां है तो कह रहा ये रहा, तो उसमें से एक एक सूत को निकालते चले जाए तो कहेंगे अरे ये तो सूत है, कपड़ा तो कहीं भी नहीं है, नहीं मिलेगा। जो सूत है उन्होंने कपड़े का रूप धारण कर लिया है। ठीक ऐसे ही जो सद रूप ब्रह्म है उन्होंने ये संसार का रूप धारण कर लिया है, वो हमको दिखता हुआ भी नहीं दिखता है। जैसे सूत ही दिख रहा है कपड़ा पहनते समय, जब कपड़ा हम पहनते हैं तो वो सूत ही है किंतु हम सूत नहीं कहते, कपड़ा कहते हैं। इसलिए यहां जो है ये सूत नहीं दिख रहा है, कपड़ा ही दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सूत है, तंतु है, वो अप्रत्यक्ष है और कपड़ा प्रत्यक्ष है, ऐसा प्रयोग होता है ना। ठीक ऐसे यहां पर चक्षु का संयोग सर्वत्र ब्रह्म के ही साथ हो रहा है, अपरोक्ष एकमात्र ब्रह्म ही है, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर। इस श्रुति यही बता रही है कि अपरोक्ष तो ब्रह्म का ही हो रहा है, किंतु जैसे तंतु का प्रत्यक्ष होते हुए भी हम कपड़ा बोलते हैं, ऐसे ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष होते हुए भी हम जगत बोलते हैं। इसलिए यहां उस ब्रह्म को पूर्ण बताने के लिए अदस शब्द का प्रयोग हुआ। इसलिए कहा अदह पूर्णम। और आगे चले दूसरा पद पूर्णम इदम। इसको आप तोड़ेंगे तो उसमें से भी दो शब्द निकलेंगे, पूर्णम और इदम। अब इसको वाक्य क्रम में बोलने के लिए इदम शब्द को पहले बोलिए तो इदम पूर्णम ऐसा होगा, जो इदम है वो भी पूर्ण है। अब इदम से किसको लेंगे, इदम से ये जो सारा संसार है, नाम रूपादि से जो विशिष्ट है, त्वम पदार्थ का, त्वम पद का जो, त्वम पदार्थ है, त्वम पद का जो लक्ष्य है, व्यवहारापन्नम त्वम पदार्थ रूपम वो भी पूर्ण है। इदम पूर्णम अदह पूर्णम, इदम कारास्पद नाम रूप उपाधि से विशिष्ट, तो ये जो तंतु है या अथवा मिट्टी लीजिए, ये जो मिट्टी है उन्होंने नाम और रूप को धारण कर लिया तो हम कहते हैं ये घड़ा है, तो घड़ा है और कंबु ग्रीवादिमान उनका रूप है, पृथ्वी नोदराकार उनका जो रूप है वो किसका, मिट्टी का ही है। तो इदम शब्द से हम घड़े को कहेंगे, मिट्टी को नहीं कहते। तो जैसे वो घड़ा है वो प्रत्यक्ष है, वो व्यवहारापन्न है। देखिए आप व्यवहारापन्न का अर्थ है आप मिट्टी के अंदर पानी नहीं भर सकते, किंतु पानी किसमें भरेंगे, जब वो घड़ा आपको घड़े के रूप में वो मिट्टी हो जाए तभी उसमें पानी भर सकते हैं। इसलिए उसके अंदर कुछ वैशिष्ट्य जरूर आया, फर्क जरूर है, किंतु मिट्टी में पानी नहीं भर सकते, घड़े में भर सकते हैं। इसी को लेकर भेदाभेदवादी ने आकार को भी सत्य माना है, वो कहते हैं कि यदि मिट्टी ही वस्तु सत होती तो फिर मिट्टी में पानी भर जाना चाहिए, किंतु मिट्टी में पानी नहीं है, पानी तो घड़े में ही भर सकते हैं, इसलिए कुछ फर्क तो जरूर है कहते हैं। ठीक है, हमारे यहां उनका निराकरण कर दिया है। निराकरण यही कि जो घड़ा है जिसमें पानी भर सकते हैं वो व्यवहारापन्न है, वाद आलंबन मात्र है, किंतु वो आदि और अंत में नहीं रहता है। वो जो आकार है वो आदि और अंत में नहीं रहता है, इसलिए वो मिथ्या है। स्वीकार किया जरूर, कुछ का स्वीकार तो किया, किंतु वो मिथ्या रूप से है जरूर, किंतु वो है क्या, मिथ्या है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इस जगत को मिथ्या कहा। असत और मिथ्या में थोड़ा फर्क किया है। असत जैसे शशश्रृंग, खरगोश के जो श्रृंग है वो कैसे असत है, वो दिखते ही नहीं, और संसार ऐसा है दिखता है, इसलिए खरगोश के श्रृंग के जैसा ये संसार नहीं है, किंतु कुछ है ऐसा हम मानते, इसलिए मिथ्या। और मिथ्या का लक्षण किया जो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, सद असत दोनों मिक्स भी नहीं है, ऐसा जो है उनको कहते हैं मिथ्या। इसलिए मिथ्या ये जो संसार नाम रूपात्मक, किंतु नाम और रूप से कुछ वैशिष्ट्य आया, व्यवहारापन्न हुआ, व्यवहार के योग्य हुआ, ऐसा जो ब्रह्म है वो भी पूर्ण है। लेकिन पूर्ण है ये तो कहा, किंतु व्यवहार कोटि में पूर्ण नहीं उनको कहा, कारण दृष्टि से वो पूर्ण है। सोपादिक ब्रह्म भी पूर्ण है, किंतु निरुपाधि आत्म रूप से वो पूर्ण है। जैसे मिट्टी है वो पूर्ण है, और घड़ा भी पूर्ण है, किंतु घड़ा पूर्ण वो कहेंगे कि मिट्टी के रूप में पूर्ण है, घड़ा घड़ा के रूप में नहीं, क्योंकि वो जो घड़ा है आकार है वो टूट फूट जाता है, इसलिए उसको पूर्ण नहीं कह सकते। किंतु मिट्टी का कभी नाश नहीं होता है, इसलिए मृतिका के रूप में घड़ा पूर्ण है। घड़े के अंदर जो मृतिका है वो तो है पूर्ण है, किंतु वो मृतिका से जो घड़ा बना है वो भी पूर्ण है, उस कहेंगे तब ये समझना होगा कि घड़ा पूर्ण है किंतु मृतिका के रूप में ही पूर्ण है। ऐसे ही समझना। क्यों ऐसा? तो उसका हेतु बताया, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस हेतु बताया, उसका भगवान की कृपा होगी तो विचार करेंगे।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om Taksa Tam Tattvam Najanami कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। यो वसौ सोऽहं यजामि। ॐ तत्सत् ब्रह्मणे नमः। जाग्रतादि त्रिमुक्तं जाग्रतादिमयं तथा ओंकारेषु संवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। ओम शांति। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए हमारा अपना ही जो रोज का अनुभव है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया कि हम इस बात का विचार करें कि जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में क्या फर्क है, अंतर क्या? अंतर क्या है कि अभिप्राय है कि सत्य की दृष्टि से, सत्य को ग्रहण करने की दृष्टि से तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है। तो जब इस पर गौर करेंगे तो पता लगता है कि सत्य को ना तो जागृत में हम ग्रहण करते हैं, ना स्वप्न में ग्रहण करते हैं और ना सुषुप्ति। जागृत में विषयों का आकर्षण, स्वप्न में वासनाओं की प्रबलता और नींद में अज्ञान हमें तत्व से वंचित कर देता है, असलियत तक पहुंचने नहीं देता। और हमारा ये ख्याल है कि हम जागते हुए जो कुछ भी करते हैं ये बहुत ठीक है या अच्छा है या लाभदायक, वस्तुतः ये भी उतना ही अच्छा और उतना ही लाभदायक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वप्न में आप कुछ कर लेते, क्योंकि स्वप्न में भी अन्यथा ग्रहण है, इसमें भी अन्यथा ग्रहण, अर्थात जो असलियत है वो नहीं। असलियत का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम करते हैं या सोचते हैं वो रहने वाला नहीं है।

अन्यथा संसार से जाते समय हर एक का ये अनुभव हो जाता है कि जो कुछ किया वो व्यर्थ ही, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ना तो साथ जाएगा ये जो कुछ जागते हुए हमने किया और ना ही साथ जाएगा जो स्वप्न में हमने देखा सुना। साथ जाने वाला तो अब भी साथ है, वो रहता ही साथ है, उसको ही आत्मा कहते हैं, उसको ही परमात्मा कहते हैं। जिसने कहीं जाना नहीं, जिसने हमेशा साथ देना है, उसका हम साथ नहीं देते, और जो रहने वाला नहीं है उसको हम अपना मानकर उसका साथ दे रहे हैं, उसी को अर्जित करने में लगे हुए। यही सारी परेशानी की जड़ है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया और जो सचमुच में अपना है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहां पर उस तत्व को, आत्मा को, तुरीय अवस्था को ऐसे कह के समझाया गया कि ना वो बाहर मुक्ता है उसमें, ना अंतर मुक्ता है, ना ज्ञान है, ना अज्ञान है, उसको देखा भी नहीं जा सकता, उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, उसकी बात भी नहीं की जा सकती, उसकी आवाज भी नहीं सुन सकते, उसको अपनी भी आवाज नहीं सुना सकते। प्रपंच के शांत हो जाने पर, मौन हो जाने पर उसकी अनुभूति होती है, बस वही वो तत्व है, ऐसा कह के इसमें वो समझाया गया। जिसको और किसी उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया, किसी में अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया, किसी को सच्चिदानंद कहा गया, सत्व स्वरूप सद एव सौम्य अग्रम आसीत, केवल सत शब्द का ही प्रयोग किया गया, उसी ब्रह्म के लिए, उसी परम सत्ता के लिए तैत्तरीय उपनिषद में रस शब्द का प्रयोग किया गया कि रसो वै स, वो रस ही है। रस ही है का अर्थ केवल इतना ही है कि सब के सब हम असल में रस की ही तलाश में, हम जो कुछ भी करते हैं रस से उत्प्रेरित, हमें रस मिलता है तो हम कुछ करते, हमारा कुछ भी जितनी भी क्रियाएं हैं वो रस से उत्प्रेरित हैं, सत्य से उत्प्रेरित नहीं कि हम सत्य की तलाश में घूम रहे हों, ऐसा नहीं। तो सभी को जो कुछ भी हम करते हैं उसमें रस मिलता है, पढ़ाई में, परोपकार के कामों में, लोगों की सहायता करने में, जो कुछ भी हम करें रस उसका हमें ही मिलता है। अगर हम किसी का सम्मान भी करते हैं तो अंदर से हमें ही खुशी होती है, इसलिए उसका सम्मान भी करते हैं। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब की सब रस उत्प्रेरित हैं, रस की तलाश में हैं और रस में ही हो रही। फर्क केवल इतना ही है कि चाहते हम रस को हैं, लेकिन रस के स्वरूप को न समझकर हम इंद्रियों की तृप्ति को ही रस मान बैठते, उससे परेशानी होती है। काम तो हम शुरू करते हैं रस के लिए और लगता भी ऐसे है कि रस मिल रहा है, लेकिन उसके खत्म हो जाने के बाद फिर हम दुख में चले जाते हैं, लगता है कि वो रस नहीं था, फिर हम किसी और चीज में उसको ढूंढते हैं। तो किसी भी चीज को ढूंढते, फिर उसको छोड़ दिया, फिर और को छोड़ दिया, इसको भोग त्याग की वृत्ति कहते हैं। ना तो हमेशा के लिए हम त्याग कर सकते हैं, ना ही हमेशा के लिए भोग में रह सकते हैं, तो कभी भोग में कभी त्याग में, इस तरह से हमारा जीवन नीचे ऊपर होता रहता है। वास्तविकता अगर समझ में आ जाए कि हम रस की तलाश में हैं,

0: फिर हम रस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शास्त्र का ही ये कहना है कि रस आत्मा का धर्म है और किसी चीज में रस नहीं है, क्योंकि रसो वही सह, रस वो ही है, सह का मतलब वो, रस वो ही है, वो का मतलब आत्मा, जिसको आप व्यष्टि रूप आत्मा कहते हैं वही समष्टि में परमात्मा कहलाता है। कि रस वही है, वो रस रूप भी नहीं, रस ही वो है, अर्थात स्वाय उसके और कहीं रस नहीं, और जहां कहीं भी होगा रसाभास होगा, रस का आभास होगा, रस की झलक होगी, रस नहीं होगा। और वो जो रस का आभास है वो भी उस आत्मा के कारण, क्योंकि रस तो आत्मा ही है, वो अपने आप को किसी दूसरे उपकरण में रिफ्लेक्ट करती है, ऐसा आप इस बात को समझ लो। जैसे किसी शीशे में हमें अपनी शक्ल दिखलाई देती है, ऐसे ही जहां आत्मीयता नजर आए वहां रस आत्मा, जहां भी आत्मीयता को, आत्मीयता से तो लगभग सब परिचित ही हैं, आत्मीयता और कहीं नहीं तो अपने बच्चे में, अपने पोतों में, किसी में तो लगती ही। तो वहां आत्मीयता में उस बच्चे को देखकर जो थोड़ा बहुत सुख मिलता है, रस मिलता है, वो असल में जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देख लेते हो, तो आत्मा जिसको हमने रस रूप कहा, वो आत्मा की झलक है, वो आपकी अपनी आत्मा है, क्योंकि आपके अंदर आत्मा न हो तो वो पोता या बेटा फिर किसी मतलब का नहीं है। तो अपनी ही आत्मा का आभास जहां मिलता है, जहां भी आत्मीयता होगी वहीं थोड़ा सा आनंद आएगा और कहीं नहीं आएगा। देखो, अगर कृष्ण, राम, शंकर, इनमें से भी जिससे आपकी आत्मीयता है, जिसके आप पुजारी हैं, उसी में रास आएगा आपको, दूसरे में नहीं आएगा, भले ही वो उसके कितने भी फॉलोअर हों। तो रस आत्मीयता में है, रसा आभास आत्मीयता में है, और रस आत्मा का नाम है। आत्मा को की व्याख्या करते हुए, या आत्मा को हिंदी में रस कह लेते हैं, ऐसा मान लो आप। तो तलाश उसी की है, बाकी और किसी चीज की नहीं। उसी के लिए बाधा क्या है? बाधा कल भी ये बात हुई कि साधना पक्ष, कि उसको जानने के लिए हम जितने भी साधन करते हैं रस के लिए, वस्तुतः उनमें से एक भी साधन ऐसा नहीं जो हम रस के लिए कर रहे हैं। रसा आभास के लिए हम करते हैं, करते रस के लिए हैं, लेकिन भटक जाते हैं और छोटी मोटी बातों में, तमाशे में ही उलझ के रह गए। जाना था कहीं और, लेकिन रास्ते में बस खेल तमाशा देखने लगे, वही रात हो गई और लौट आए। तो बात यह हुई कि जैसे अर्जुन का ये प्रश्न था कि हम क्यों सच्चाई से गिर जाते हैं, ना चाहते हुए भी बुराई में क्यों फंस जाते हैं, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही थी कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। तो ये हमारा काम या रजोगुण की कल बात की थी कि ये, अब इसको आप ऐसा समझो, देखो जैसे आत्मा को अगर ढूंढना हो तो स्वपन जागृत सुषुप्ति का विवेक करते हुए तुरीय तत्व तक पहुंच जाते। वेदांत में श्रवण मनन निदिध्यासन और फिर साक्षात्कार तक पहुंच जाते। ऐसे ही सभी अंतम लक्ष्य का जब हम कोई नाम रख लेते हैं तो उस तक पहुंचने के फिर जो पड़ाव हैं उनके भी नाम अलग अलग रख लेते हैं, कि वहां श्रवण मनन निदिध्यासन से पहुंचोगे और इस मार्ग से चलोगे तो स्वप्न सुषुप्ति जागृत से पहुंचोगे, किसी और मार्ग का नाम लोगे, कर्म मार्ग का नाम लोगे तो उसमें निष्काम आप वही कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्, वहां भी चार बातें आ जाएंगी। कर्म का ही कर्म को करो, फल की इच्छा न करो, कर्म को छोड़ो भी नहीं, ऐसा करते हुए उसमें भी वैसे ही कदम आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम उसको रस मान लेते हैं कि वो रस है और रस की ही तलाश है, रस मेरे अपने ही अंदर है, तो उसको उस तक जो पहुंचने का रास्ता है रस के मार्ग से, उसकी भी चार ही कदम है। उनको कहते हैं रंजक, सुंदर, भव्य और दिव्य। रंजक का मतलब होता है पहले तो ये जीवन, ये संसार, हर चीज रंजक। रंजक का मतलब होता है नफरत ना हो, रंजन करने वाली, जो आपके मन को प्रसन्न करे। तो पहली स्थिति तो रंजन की है। पहली स्थिति अंग्रेजी में इसको प्रैटी बोलते हैं, प्रैटी। प्रैटी क्यूट, छोटे बच्चों को भी, जो सुंदर सा बच्चा हो, नटखट सा हो, उसके लिए प्रैटी शब्द का प्रयोग करते हैं। नॉटी भी उसको कहते हैं, क्यूट भी उसको कह लेते हैं। उसी को हिंदी में रंजक कहते हैं। रंजक का मतलब है कि संसार की हर चीज, छोटी से छोटी चीज, इतनी से इतनी चीज रंजक है, कोई भी नफरत करने लायक नहीं। ये इसका अर्थ कि हर चीज रंजक है। रंजन की भी साधना है, रंजक कैसे लगेगी हर चीज उसकी भी साधना है, वो करना पड़ेगा। जिसको नहीं लगती, जिसको लग ही रही है हर चीज सुंदर, उसकी बात कोई बात नहीं। तो रंजक एक पहला कदम है। दूसरे कदम को कहते हैं सुंदर, ब्यूटीफुल। पहला प्रैटी, फिर एक कदम आगे बिठाए तो ब्यूटीफुल। प्रैटी और ब्यूटी में, रंजक और सौंदर्य में अंतर है दोनों की साधना में। जितना जितना आगे बढ़ेंगे, अब नफरत और कम होती चली गई, दुनिया में हर चीज से एकत्व स्थापित होता गया। और जब ब्यूटी से भी हम आगे उठते हैं तो उसको ग्रैंजर बोल देते हैं, भव्यता। और भव्यता से भी जब आगे उठे तो दिव्यता। दिव्यता को सब्लिमिटी कहते हैं, सबलाइम कहते हैं, डिवाइन भी कह लेते हैं। वहां जाकर आप और रस, साधक और रस एक हो जाते हैं। वहां उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। इस साधना में वैसे तो कोई भी साधना हो, नाम अलग अलग हैं लेकिन क्रियाएं एक जैसी हैं। क्रियाओं का मतलब है जो हमें करना है वो एक जैसा ही। जो हमें रस तक नहीं पहुंचने देता, जो हमें रंजकता तक नहीं पहुंचने देता, वो क्या है? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। रंजकता में भी वही बाधक है और आत्म तत्व की अनुभूति में भी वही बाधक है। जिसको हमने आत्म तत्व कहा, तुरीय तत्व कहा, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम कहा, उस तक भी वही नहीं पहुंचने देता और रस तक भी वही नहीं पहुंचने देता। मार्ग कोई भी हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, तंत्र का मार्ग हो या सूफियाना, कोई भी मार्ग आपका दुनिया में हो, इतना हमेशा ध्यान रखना होगा कि उपलब्धि इन इंद्रियों के माध्यम से ही है। चाहे कितना भी कहो लेकिन फिर भी इन कानों से हम सुनते क्या हैं, इन आंखों से हम देखते क्या हैं, हर उपलब्धि में यही आंख, यही कान, यही हाथ, यही जुबान, काम यही आने। कर्म मार्ग में भी यही है, ज्ञान मार्ग में भी यही है, उपासना में भी यही। ऐसा नहीं है कि इनके बिना कोई भी उपलब्धि हो जाए। अगर कर्म इंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां ही नहीं तो जीव ब्रह्म की एकता भी काहे की रह गई? फिर तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये दोनों बीच में से निकाल दो तो आप है ही नहीं, कोई भी उसका मतलब है ही नहीं। तो वो है ही नहीं में भी वेदांत वाले है शब्द को पकड़ लेते हैं कि नहीं के रूप में वो है, यानी कि फिर भी आप हो, आत्मा तो रहेगी, इंद्रियां रहे न रहे, एक दिन जैसे इंद्रियां ये वो सब नहीं रहेंगी, फिर भी हम रहेंगे, तो वो तो चलो परम स्थिति है, जो समझ ले उसको वो बाद की बात है। लेकिन जिंदा रहते हुए अगर ज्ञान मार्ग से भी आप आगे जाना चाहते हैं, कर्म मार्ग से जाना चाहते हैं, या किसी भी मार्ग से जाना चाहते हैं, साधन का प्रयोग इन इंद्रियों से ही करना होगा। इसलिए सबसे पहली शिक्षा इंद्रियों की शिक्षा ही है। अगर आप इंद्रियों को सुशिक्षित नहीं करते तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। ये सबसे पहली और आखिरी बात भी यही कह लो कि अगर साधना के क्षेत्र में सचमुच आगे किसी ने बढ़ना है तो ये सोच लेना कि आंखें बंद करके मैं रोज ध्यान करूंगा, या अपने आप को ऐसा समझ लो, या शंकर की फोटो ले लो, ये सब जितना मर्जी करो आप, लेकिन किसी जगह कोई पहुंचेगा नहीं। और पहुंचे भी नहीं है, बातें करने में सुनने में अच्छी लगेंगी कि आप आंखें बंद कर लो, अब अपने आप को सोचो कि मैं तैर रहा हूं, चलो आंखें बैठे हुए यहां तैरते वो सोच रहे हैं, तो थोड़ी ये सारी कल्पनाएं हैं, इनमें सत्यता नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसी को अगर अपने इस उपनिषद को याद रखो तो स्वप्न देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां मन रह जाएगा बाकी इंद्रियां नहीं, मन ही मन से आप दरिया भी बने हुए हो, समुद्र भी बने हुए हो, तैर भी आप ही रहे हो, उछल भी आप ही रहे हो, तो ये स्वप्न, यही तो इन दिनों में देखा हमने। तो इसलिए ये स्वप्न को भी अन्यथा ग्रहण कहते हैं और असलियत नहीं, आंख खुलेगी नहीं रहना हो तो कितनी देर, या तो सारी उम्र आंख बंद करके तैरते रहो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया काम कुछ ना कुछ, लेकिन कितनी देर तैर लोगे। तो ये कोई ध्यान की प्रक्रियाएं नहीं है, इस तरह के ध्यान जो आज के युग में बहुत पॉपुलर हुए और बहुत महत्वपूर्ण हुए, क्या फिर जोर जोर से उछलो, चीखे मारो, ऐसा करो वैसा करो, ये मनोराज्य, इसको स्वप्न कहा, ये अन्यथा ग्रहण, क्योंकि इसमें अंतः प्रज्ञा, ये अंतः प्रज्ञा तेजस का, जितना जितना भी आप इस स्वप्न के स्वरूप को समझोगे आपको पता लग जाएगा ये साधनाएं व्यर्थ की हैं, ये हमें सत्य तक नहीं ले जा सकती। तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम आपका यही है कि इंद्रियों को सुशिक्षित करना। यहां पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बढ़िया बात कही, कल आपने एक श्लोक पढ़ा था कि आवृतम ज्ञानमेतेन, इसने ज्ञान को आवृत कर रखा है, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम ने रजोगुण ने, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी। उन्होंने आगे ये बात कही कि इंद्रियानि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर् विमोहेत्येषे ज्ञानम् आवृत्य देहिनः। इंद्रियानि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते, ये जो काम है, जो रजोगुण है, जो असलियत से हमें हटाकर दूसरी ओर ले जाए, इसका अधिष्ठान क्या है, ये कहां रहता है, इसका निवास स्थान टिका हुआ किस पर है। इंद्रियानि मनो बुद्धि, इंद्रिया मन और बुद्धि, ये इस काम के या रजोगुण के, रजोगुण या काम एक ही बात है गीता की अगर भाषा में हम कहेंगे तो, इन दोनों में कोई अंतर वाली बात नहीं है, रजोगुण ही काम है, काम ही रजोगुण है, दोनों का स्वरूप एक जैसा है, दोनों के नुकसान एक जैसे हैं, अर्थात वो असलियत में रजोगुण केवल स्वप्न को कहते हैं, क्योंकि जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं इस अंतः प्रज्ञा की व्याख्या में, तो उस समय सिर्फ रजोगुण ही काम कर रहा होता है, तमोगुण नींद में है, वहां आप ठहरे हुए सो गए हुए, वहां इनर्शिया, वहां कुछ है नहीं, तो पूर्ण रूपेण रजोगुण स्वप्न है। इसलिए काम कहो उसको, क्रोध कहो, जितनी बातें, इनका महत्व बस उस स्वप्न जैसा ही है, जैसे स्वप्न में नुकसान ही नुकसान है, अगर आदमी जाग जाए तो सीधे रास्ते पर चल जाएगा, नहीं तो सारी उम्र स्वप्न ही देखते रहे। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसका अधिष्ठान क्या है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ये जो इन्फेक्शन है ये सबसे पहले इंद्रियों में आएगा, और फिर ये इन्फेक्शन अगर इंद्रियों पर इसका इलाज नहीं किया तो मन तक चला जाएगा, इंद्रियानी मनो बुद्धि, फिर तीसरे नंबर पर बुद्धि आए। ये वो इन्फेक्शन है कि इंद्रियों से शुरू हुआ, अगर इंद्रियों पर नहीं रोका गया तो ये मन तक पहुंच जाए, फिर मन भी उसके पीछे लग जाए। पहले तो आंख देखती है, अगर वही समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, भद्रम पश्येम अक्षिभिर यजत्राः, जो रोज कहते। अगर कहीं कोई किस्मत अच्छी हो, कोई संस्कार अच्छे हो, और अगर कभी ये भी ध्यान आ जाए कि मैंने पिछले 25 वर्ष से वेदांत सुना है, तो नजर जहां लगी हुई है जरा सा भी मन में विकार आने लगे तो ये ध्यान आ जाए कि मैंने हजार बार पढ़ा भद्रम पश्येम अक्षिभिर, है मेरी आंखों को भद्र को देखना और मैं करने क्या लगा। अगर आप संभल गए तो आपके गुरु भी धन्य और आप भी धन्य, और जिन्होंने इतने प्रयत्न किए सत्संग को चलाने के, भवन बनाने के, उन संत के प्रति हमारा कर्जा उतर गया। और अगर वहां ये याद नहीं आया तो फिर अपने आप ही कह लेना जो मर्जी है, उसमें मेरे कहने की कोई बात नहीं। इंद्रियानी मन, इंद्रियों से इन्फेक्शन शुरू हुआ। आंख अगर किसी से चिपक गई, किसी की ड्रेस से, किसी की उसके, किसी से उसके, तो मन तो फिर जाएगा ही। इंद्रियों को रोक लेना आसान है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन मन तक पहुंच गया तो फिर रात को भी सोने नहीं दे, फिर उपाय ढूंढने शुरू करोगे कि जो बाधाएं आ रही हैं बीच में, मां बाधा है तो मां को अलग करो, बाप बाधा है तो बाप का कत्ल करो, अगर कोई मित्र बाधा है तो मित्र को हटाओ, मन फिर वहां तक पहुंच जाता। तो इंद्रियानी मनोबुद्धि, बुद्धि का मतलब होता है फिर कोई चारा नहीं, फिर क्रैश। अगर क्योंकि बुद्धि फिर भी कहती रहती है कि ठीक नहीं, संभल, ठीक नहीं कर रहा तू, बुरे से बुरे में भी बुद्धि आपको वार्निंग देती है कि यह बात ठीक नहीं। लेकिन अगर बुद्धि ने भी मन के पीछे लग गई, क्योंकि मन में इन्फेक्शन जब बहुत फैल जाए, देखो छोटा सा इन्फेक्शन जब वो कैंसर ही बन गया पूरे शरीर में, तो अब कोई इलाज नहीं, अब चाहे उसका ऑपरेशन करवाओ या कुछ भी कर, अब बचने वाला नहीं। तो बुद्धि में जाते ही वो फिर विकार पूरे रूपेण आप विकृत हो गए। इसलिए गीता जितना अच्छा ग्रंथ शायद ही दुनिया में आपको कोई मिले, इतने क्रम से उसी बात को, जिस बात को हम और शब्दों में, इन शब्दों में कहें, यहां उन्होंने आसान शब्दों से क्रम बना के भी बतला दिया कि देखो ये ऐसा है, क्योंकि इसके अधिष्ठान है ये। अधिष्ठान का मतलब इसकी पकड़, जैसे कोई घुसपैठिए नहीं होते, जैसे कोई आतंकवादी हैं, अगर उन्होंने बॉम्बे को भी कहीं कोई नुकसान पहुंचाना होगा ताजमहल में, तो उनके दो चार यहां ठिकाने होते हैं जिसमें आके पहले बैठेंगे, उनमें बैठ के फिर वो बाकी का काम कर लेते। तो ऐसे ही ये जो पतन का काम है, जो हमें पतन की ओर ले जाती है रजोगुण या काम वासना जिसको आप कह लो, कामनाएं जो ले जाती हैं, ये शुरू कहां से होती हैं, इंद्रियों से। अगर इंद्रियों से शुरू होती हैं तो ये फिर बात ध्यान में रख लो कि भद्रम करने भी श्रुणियाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षिभिर यजत्राः।
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ शैवम.org, वी आर वेरी मच डिलाइटेड टू लेट यू ऑल नो दैट due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Harihi Om. Yenavo Agnim Namasa. ऊर्जो नपतमाहुवे प्रियंजे तिष्ठा मारतिं स्वाद्वरं विश्वास्यादो तमाम्रतं शेषेवा नेशो मात्रुषो संत्वमर्ता सिंधते आतंद्रो हव्यं वाहसि हा विस्कृताः अतिर्देवेशो राजसि अधर्षि गातु वित्तामः यस्मिं प्रथन्याददुः उपोसो जातमार्या स्यवार्धानम् अग्निर्नाक्षन्तो नो गिराः अग्नेरुत्थे पुरोहितः ग्रावानो बहिराद्वरे रुचायामिमर्तो ब्रह्मणस्पते देवम् आवुवरेण्यम् अग्नेमेष्वावासे घाताभिशिरचोषिषाम् अग्निं राये पूरिमिडा श्रोतन्नराः अग्निश्रोदेता ये चादिः श्रोदिशुत्कर्णवह्निभिः देवैराग्नेशयावाभिः आसीदतो बर्हिषि मित्रो अर्यामाम् प्रथर्यवाबीराद्वरे प्रथैवो दासोऽग्निः देव इन्द्रो नाम जुमानाम् अनुमतारं पृथिवि विवावृते तस्थौ नकाशसर्माणि अदाज्मो आदावादिवः बृहातोरु छानादति आयावार्धस्वातन्वा गीरा मम आजाता सुकृतो प्रणाम कायामानो वानत्वं यन्मात्ररजगन्नापः न ताप्ते अग्ने प्रामृषे निवार्तानम् यद्धूरेशन्निहाभूवः नित्वामाग्निमनोर्धते ज्योतिर्जनायशाश्वादे तितेताकण्वारुताज तौक्षितः यन्नामास्यन्ति कृष्टायाः देवो वो द्रविणोदाः हरिः ओम्
2: ओम् नमः शिवाय डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन वेद मंत्रम द टाइटल इज शिव सुप्रभातम प्रेजेंटेड बाय वेदमंत्रम.com टीम ओम नमः शिवाय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

नमः ॐ उच्चैर्घोषाय नमः ॐ मुच्छाय नमः ॐ उज्ज्वलाय नमः ॐ उज्जयिन्यां महाकालाय नमः ॐ उत्पत्तिस्थितिलगालगाय नमः ॐ उत्पत्तिसंसारविनाशहेतवे नमः ॐ उत्पलैर्मिश्रिताय नमः

0: स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं पत्युरह्नां सङ्कीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं पत्युरह्नां सङ्कीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजः प्रत्यहं पत्युरह्नां इति श्रीमद्भारद्वाजकुलजलधिकौस्तुभ नित्याग्निहोत्रि मीमांसकमूर्धन्य श्रीकण्ठमतप्रतिष्ठापनाचार्य चतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहक श्रीमदद्वैतविद्याचार्य विश्वजिद्याजिश्रीरङ्गराजाध्वरिवरसूनु श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्ररचितम् आदित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Madhyandina Shaka, Adhyayam 2.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव भक्ति से संबंधित स्तोत्र शिवानंद लहरी इस सायंकालीन विशेष प्रवचन के अंतर्गत 10 दिवसीय ये प्रवचन श्रृंखला का आज 8वां दिन। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर है 62।

रक्ष्याम भवत भावना पर्यंके विनिवेश्य भक्ति जननी भक्तार्भकं रक्षति। आदिगुरु शंकराचार्य जी

उसकी मां करेगी, उसको दूध पिलाएगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, बढ़िया श्रृंगार करेगी, किसी का नजर न लगे इसलिए काल में थोड़ा सा काला काजल भी लगा देगी, ठंडी न लगे इसलिए उसको कपड़ा भी पहनाएगी, भूख न लगे इसके लिए उसको दूध भी पिलाएगी, और ठीक समय में निद्रा लग जाए इसके लिए लोहरी भी गाएगी, थपथपाएगी, लोहरी गाएगी, बच्चा उसके थपथप से, उसके गीतों से सुनते सुनते वो सो जाता है। मान लो एक मां अपने बच्चे के लिए जिस तरह वो ख्याल रखती है, सेवा करती है, उसी तरह एक मां और है जो हमारे लिए ख्याल रखती है, उसका नाम रख दिया है भक्ति जननी। भक्ति ही जननी है, वास्तव में संसार में मनुष्य का दो जन्म होता ही होना ही चाहिए, जब तक दो बार उसका जन्म न हो तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए वेद ने द्विज को ही मुक्ति का अधिकार माना है, मोक्ष का अधिकार किसको है, द्विज को है, जिसका जो दो बार जन्म होता है वही मुक्त हो सकता है। एक बार तो सामान्यतया अपनी मां के गर्भ से, और दूसरी बार सामान्य द्विज की परिभाषा करते समय में मंत्रों की दीक्षा से, ये उसका द्विज जन्म होता है इसलिए उसको द्विज कहा जाता है, क्योंकि संसार के द्विजों का तो ये दो जन्म है, मातृगर्भ और गायत्री गर्भ, मंत्रों की गर्भ, दीक्षा गर्भ। संसार में आने के लिए, संसार में वैदिक कर्म करने के लिए इस प्रकार का द्विजत्व तो होना जरूरी है, लेकिन संसार से मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए फिर द्विजत्व तो होना जरूरी है। उसका दूसरा जन्म किससे होगा, एक तो शरीर के दृष्टि से जन्म देने वाली जननी हो गई मां, उसके गर्भ से उसका जन्म होता है, वो तो हम लोगों का हो चुका है, मां ने हमको खूब नलाया है, हमारे इस शरीर में खूब तेल लगाया है, भूख लगने पर दूध पिलाया है, सुलाने के लिए बढ़िया बढ़िया लोरी गाया है और थपथपाया है और बढ़िया कपड़ा पहनाया है और झूलों में सुताकर झुलाकर झूला भी झुलाया है, पालना, पालना बोलते हैं ना हिंदी में, आप लोग क्या बोलते हो गुजराती में, शू कहो छो, ओड़ी कहो छो, पालना, ये सब तो मां कर चुकी है ना, अब करना बाकी है,

0: लेकिन तुम्हारा एक जन्म और होना जरूरी है। वो जब तक एक बार और पैदा न होगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। वो है भक्ति जननी। भक्ति के गर्भ से तुम्हारा नया जन्म होना चाहिए। भक्ति तुम्हें नलाएगी, भक्ति तुम्हें नया वस्त्र पहनाएगी, भक्ति तुम्हें दूध पिलाएगी। भक्ति तुम्हें श्रृंगार करेगी और भक्ति तुम्हें सोने के लिए लोहरी गाएगी। भक्ति यदि लोहरी गाएगी तो तुम सोओगे कि जागोगे? जन्म देने वाली मां तो सुलाने के लिए लोहरी गाती है और भक्ति जगाने के लिए लोहरी गाती है। ये फर्क है हो भक्ति जननी में और तुम्हारी जननी में। तुम्हारे हमारी जननी में और भक्ति रूपी जननी में ये अंतर है। हमारी मां तो हमको सुलाने के लिए लोहरी गाती है और भक्ति जननी हमको जगाने के लिए लोहरी गाती है। जब मीठी मीठी आवाज से भक्ति जब गाएगी तब हमारा नींद खुलेगा। नहीं तो सो रहे हैं, अनादिकाल से सो ही तो रहे हैं। पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्तभूतम जगत। ये देख लो महाराजा भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर ढंग से लिख दिया है। मोहमयी मदिरा को पान करके ये सोया हुआ है, उन्मत्त हुआ है। और संत तुलसीदास जी ने तो सोने का कारण ही दूसरा बता दिया है, मोह निशा सब सोवनिहारा। मेरा तेरा रूपी जो मोह रूपी निशा है ना, रात्रि मोह रूपी रात्रि, उस मोह रूपी रात्रि में संसार के सारे जीव सोए हुए हैं। आप हम सब उसी मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं। सोए सोए ही सारी पढ़ाई कर ली। बोलो, जागकर पढ़ाई किया कि सोए सोए पढ़ाई किया? सोए सोए सारी पढ़ाई कर ली, सोए सोए ही शादी कर ली। जगे होते तो शादी होती? सोए सोए ही सब शादी हो गई। और मुझे लगता है सोए सोए ही बच्चे हो गए, सोए सोए ही दादी हो गए। ले जी, सोए सोए शादी हो गए, सोए सोए बच्चे हो गए और सोए सोए दादी हो गई, दादा हो गए। अभी हम लोग दादी दादा हो गए कि नहीं, नाना नानी हुए कि नहीं? हो गए, लेकिन अभी भी जग नहीं रहे, सोए ही हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा। एक ही मां संसार में है जो हमको जगाती है, हमें जगाने वाली मां अभी हमको नहीं मिल रही है। शंकराचार्य जी ने उस मां का नाम रख दिया है भक्ति जननी। आनंदाश्रुविरातनोति पुलकम। छोटा बच्चा जब होता है उसको नलाना पड़ता है, मां गर्म पानी से नहलाती है, वो डरती है ठंडे पानी से नहलाएंगे तो निमोनिया ना हो जाए कहीं, पहले पानी गर्म करेगी। और वो गर्म भी ऐसा कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए कहीं जल ना जाए, सहन कर सके ऐसा गर्म उस गर्म पानी से नहलाती है। भक्ति जननी भी नहलाती है वो, लेकिन उसके पास पानी क्या है, आनंदाश्रुभिरातनोती। जब आपके अंदर हृदय में आनंद भक्ति का भाव जगेगा, जब आपको भक्ति जननी प्राप्त होगी, तो भक्ति आनंद रूपी अश्रु से भक्त रूपी भक्त को नलाती है। आंसू ठंडे होते हैं कि गर्म होते हैं? आप रोए हो कभी? बोलो महाराज जीवन भर किया ही क्या, और है? जीवन भर किया ही क्या, वही तो किया है। और आपको पता ही है आंसू ठंडे होते हैं कि गर्म? आंसू तो गर्म ही होंगे ना, इसलिए शंकराचार्य ने आंसू और मां जो बच्चे को नलाने वाला पानी की उपमा दी है। आनंदाश्रु भी, मान लो भक्ति करते करते आप भगवान के वियोग में जब भी अंदर से जब रोने लगते हो, वह आपके आंसू नहीं, भक्ति गर्म पानी कर रही है। वो क्या कर रही है भक्ति? मानो तुम्हें नलाने के लिए पानी गर्म कर रही है। भगवान की सेवा करते समय में, भगवान के जप करते समय में, भगवान के चिंतन करते समय में, भगवान के ध्यान करते समय में, आपको भगवत भक्ति करते समय में अंदर से जो आनंद आता है, उस आनंद से आंख से जब आंसू गिरने लगते हैं, आनंदाश्रु, मानो कि भगवती भक्ति भक्त रूपी बच्चे को नलाने के लिए गर्म पानी तैयार कर रही है। उस आंसुओं से आपकी शुद्धि होगी। भक्त रूपी अर्भक, अर्भक शब्द का अर्थ होता है बच्चा। भक्ति जननी भक्तार्भकम् रक्षति, भक्ति रूपी मां जननी भक्त रूपी बच्चे की रक्षा करती है। कैसे? पहले तो नलाएगी उसको। किससे नलाएगी? कौन से पानी से नलाएगी? आनंदाश्रुभि आतनोति आसमंता तनोति। ऐसा नहीं कि उसको पांव धो दिया और हाथ धो दिया और मुख धो दिया बन गया। आतनोति, पूरा का पूरा धोएगी वो, खूब नलाएगी। तुम्हारे जीवन में जन्म जन्मांतरीय अशुभ वासना ही मल है, दोष है। हमारे जीवन में जो अनादिकाल से जो दोष है, जो मल है, विकार है, कर्ता का विकार, भोक्ता का विकार, राग द्वेष का विकार, लोभ मोह का विकार, वही तो हमारे जीवन को विषाद और दुर्गंध से युक्त बना दिया है, अप्रिय बना दिया है। और ये सारे दोषों को तो भक्ति जब गर्म पानी से नहलाती है, तभी जाकर ये दोष निवृत्त होंगे भाई। बच्चा जब मल करता है, मूत्र करता है, उसको तुरंत सफाई न करो तो दुर्गंध आने लगता है। मां को पता चल जाता है कि इसने मलमूत्र किया। पहले के जमाने में तो डाइफर का सिस्टम नहीं था भाई, हमारे जमाने में तो डाइफर डुइफर कुछ नहीं था है? तुम लोगों के जमाने में था? नहीं था भाई।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: इतनी पढ़ाने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो कहते हैं कि ब्राह्मण अभी अमुक ब्राह्मण है, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर है। उसको ऐसा विद्या पढ़ाते हैं कि पढ़ते पढ़ते इतना साक्षर हो जाता है कि कहता है बस मैं तो अमुक का बेटा हूं। दूसरा आता है कहता है बिल्कुल झूठ बोला, कोरा झूठ, तू बेटा नहीं, तू हमारा भतीजा है। मैं जब आऊ पूछू तो कहना कि मैं आपका भतीजा और आप हमारे चाचा। ये जितने लोग आते हैं ना, इसके बाद मामा आया, उसने कहा कि सब झूठ बोल रहे, तू ना जो है किसी का भतीजा है न तू बेटा है, तू मेरा शुद्ध भांजा लगता है, मैं तेरा मामा हूं। महाराज दुनिया वाले इतने पढ़ाई पढ़ा देते हैं ना कि हम जो है निशेष हो करके भी सविशेष हो जाते हैं और फिर जीवन भर नाचते रहते हैं, नचाते हैं। मामा ये भांजे की रस्सी से नचा रहा है तो चाचा भतीजे के, तो दुश्मन भी आता है कहता देख मैं तेरा दुश्मन हूं। इतने गले में ये रस्सियां बंध जाती है, हम जीवन भर नाचते रहते और दिन पर दिन बढ़ती जाती है रस्सियां, घटती नहीं है। एक केवल वेदांत ऐसा है जो आपको साफ साफ कहता है कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त निविशेष चैतन्य हो। ये तो मतलब के लिए उपाधियों को लोगों ने जोड़ दिया है, मतलब जानते हैं ना, जिसे किसी से काम निकालना हो तो हम लोग जो है उसकी बड़ी तारीफ कर देते हैं। तो यहां पर निविशेष चैतन्य है, उस पर हलाहल विश्वमल विद्या का आरोप। ऐसे जीव निविशेष चैतन्य है, इसके ऊपर नाम रूप आदियों का आरोप हो गया। आरोप होने के बाद कामना होती है और काम का दान भी भगवान शंकर ही करते हैं, जिस 15वें श्लोक में बतलाया गया है कि सिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुर नरे। यह जो कामना है वह कामना चाहे देवता हो या असुर हो या नर, कहीं पर भी इसकी अबाध गति है। जब तारकासुर पूरे ब्रह्मांड को पीड़ा पहुंचाने लगा और भगवान शंकर से वरदान प्राप्त होके अमर के समान हो गया था, ब्रह्मा जी ने वरदान में एक बात कही थी कि तुझे केवल शंकर पुत्र ही मार सकते हैं, और उदंड हो गया। उसे पता था कि सती का दाह होने के बाद भगवान शंकर हिमालय पर समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, न भगवान शंकर के जल्दी समाधि खुलेगी, न ब्याह होना है न पुत्र होना है, निश्चिंत रूप से वह संसार में उत्पात मचा रहा था। सारे देवता पीड़ित होकर के भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर बिल्कुल समाधि में बैठे हैं, अपने स्वरूप चिंतन में तल्लीन है। देवताओं ने कामदेव को पुकारा, बहुत तारीफ किया। राजस्थान में चंग चढ़ाना बोलते हैं ना, किसी काम निकलना तो चंग चढ़ाते हैं। खूब तारीफ किया कि देखो भाई, इस समय तुम ही यह काम कर सकते हो, तुम्हें हम लोग बहुत इनाम देंगे। अब कामदेव भी देवताओं की बात में आ गया, पहले तो मना किया कि भगवान शंकर के समाधि को खोलना अर्थात सीधा अपनी मौत को पुकारना है। पर जब सबने कहा, भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि ये तो केवल तू ही कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, हम लोग तेरे सहायक बनेंगे, तू जो हमारा नेता है, किसी को नेता बना दो ना, जो नेता बनता उसको मालूम है, गिरीश भाई को मालूम है कि व्यवस्था में स्वर्ण रथ महोत्सव मनाने में कितनी तकलीफ पापड़ बेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में बोलते हैं पापड़ बेलना, पापड़ बेलने में बहुत मुसीबत होती, लोग तो आराम से एक सेकंड में अग्नि पर रख के पापड़ सेक के खा लिए, सबसे आसानी से पापड़ खाना होता है, परंतु बेलने में कितनी परेशानी, वैसे महोत्सव को मनाने में कितनी परेशानी। पर किसी को नेता बना दो ना, खुदरा आनंद से वो मनाता है, उत्साह रहता है। हमारे यहाँ जब किसी महात्मा से काम लेना हो तो उसको मंत्री महामंत्री बनाते हैं, ये कुठारी शब्द पुराना हो गया ना, तो कुठारी से उसको बुरा लगता है, हीन भावना होती है, काम तो पूरा कुठारी का ही है, वही जो व्यवस्था है नमक में दाल चेल देख रेख वही काम है, परंतु कुठारी शब्द को विकसित करके उसको मंत्री महामंत्री से पुकार तो खुश होता है, मैं मंत्री हो गया महामंत्री हो गया, काम निकालना है। ऐसे ही जो यहाँ पर भी कामदेव से काम निकालना था, तो देवताओं ने कहा कि देखो तुम हमारे नेता हो, भगवान विष्णु ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। सब जो है हिमालय पहुंचे, वहां भगवान शंकर समाधि लगाए हुए हैं। तुरंत काम बाण का अनुसंधान किया, अनुसंधान करते ही भगवान शंकर की आंख खुली। जैसे हम लोग नींद से जब जगते हैं तो नींद में हमारे आंख में खुमारी होती है, खुमारी मतलब की आधी नींद होती है, थोड़ा बंद होता है, थोड़ा नींद का असर होता है, तो समाधि का असर दाहिने आंख में है और काम बाण के कारण से बाएं आंख में भगवान शंकर के श्रृंगार रस है, बाजू में पार्वती जी सेवा कर रहे उनको भी देख रहे, और तीसरे नेत्र से विचार किए, तीसरा मतलब ज्ञान नेत्र, कितने दिन से पार्वती हमारी सेवा कर रही परंतु कभी भी कामना नहीं हुआ, आज अचानक कैसे हुआ, क्योंकि तो इसके मन में कोई कामना नहीं हो सकता ना, मेरे मन में हो न हो किसी तीसरे व्यक्ति का काम होगा। भगवान जब दृष्टि दौड़ाए तो बस कामदेव धनुष बाण फेंक दिया, ताकि हमने नहीं किया है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, जैसे देवता लोग खड़े पंक्ति वैसे मैं भी दर्शन कर रहा हूं। पर भगवान शंकर समझ गए कि कामदेव का ही काम है, बस तत्काल उस ज्ञानाग्नि से कामदेव भस्म हो गया, तब से कामदेव अनंग हो गया। तो देखो भगवान शंकर के पास यदि काम पहुंचा तो उसका नाश हुआ, तो हमारे जीवन में भी जब अविद्या के बाद जब काम हो और कामना से जब परेशान हो तो एक ही सहारे हैं भगवान शंकर। इसी बात को उपनिषद के मंत्रों में बदलाया है कि आत्मकामः, सबसे पहले आत्मकाम होना चाहिए, फिर अकामः आप्तकामः शोकानंतरम्। जीवन में कामनाओं से शोक हो रहा हो, विषाद संतप्त हो रहे हो, तो सबसे पहले आत्मा की शिव की कामना करें। जैसे कामदेव भगवान शंकर के पास गया तो पहुंचते ही काम का नाश, और नाश होने के बाद भी 15वें-16वें श्लोक में ज्ञान गंगा का अवतरण वर्णन है। तो हमारे जीवन में भी ये जो कामदेव की बाणे है ना, विशिखा, विशिखा शब्द का अर्थ होता है विविध प्रकारेण शिखा विशिखा, एक दीपक की शिखा होती है, मोमबत्ती की शिखा होती है, और ये कामदेव की ऐसी विशिखा है कि संसार में सर्वत्र विजयी होती है, कहीं पर भी जाए देवलोक। जब ब्रह्मा के पास कामदेव गया जमाने के लिए, बेचारे ब्रह्मा ही मुग्ध हो गए, इंद्र ही मुग्ध हो गए, अहिल्या के सतीत्व का भंग किया। वैसे ही भगवान शंकर को समझा कि जैसे ब्रह्मा है, इंद्र है, ऐसे जो है इनको भी हम वश में कर लेंगे। उपनिषद में जहां प्राणोपासना है वहां पर कहा है प्राण एव ब्रह्म, तो वहां पर जब उद्गीत कर्म प्रारंभ होता है तो जैसे उद्गीत कर्म प्रारंभ वैसे ही असुर लोग आक्रमण करते थे। पहले उद्गान वाणी ने किया तो वाणी को असुरों ने विद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। इसके बाद आंख ने किया, कान ने किया, सब ने किया। अंत में प्राण ने उद्गीत कर्म प्रारंभ किया। तो जिस प्रकार से पत्थर के पास मिट्टी के ढेले जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे ही प्राण के पास जब असुर गए तो वहां जाते ही समाप्त हो गए। ऐसे ही कामदेव ने सोचा कि अन्य देव असुर मनुष्य के समान ये हमारे बाण भगवान शंकर को भी वश में कर लेंगे, और हो गया विपरीत। कल हमने आपको सुंदर का चरित्र सुनाया था, शेष था ना, तो सुंदर के जीवन में यही घटना घटती है कि एक बार तो भगवान शंकर ने अपने प्रिय भक्त, जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन भी थे, उद्धव जी भी थे, कई थे, ऐसे ही सुंदर को भगवान शंकर ने शिव मित्र नाम दिया। तो हमारे मित्र हो, जब चाहे तब तो हमारे सामने आ सकते हो, क्यों मित्र के लिए कोई नियम नहीं होता है, वह नहा धोकर आए, बिना नहाए आए, कैसे भी आ जाए। भक्त के लिए नियम होता है, शिष्य के लिए नियम होता है कि नहा धोकर आए गुरु के पास। परंतु भगवान ने सुंदर को सीमित नाम दिया कि तुम हमारे मित्र हो और कभी भी आ सकते हो। तो सुंदर जब जवान हुआ तो एक दिन पुष्प वाटिका में पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गया। उधर से एक परवा नामक गणिका की कन्या भी पुष्प लेने आई थी। संयोग से जैसे ही सुंदर ने उस परवा नामक वेश्या कन्या को देखा, मुग्ध हो गया। उसका सौंदर्य इतना सुंदर था कि अपने आप को रोक न सका। उधर परवा भी इसको देखकर मुग्ध हो गई। इसके बाद वहां से दोनों अपने अपने घर गए। इधर सुंदर के मन में उसका सौंदर्य इतना हलचल उत्पन्न कर दिया कि वह भगवान शंकर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया, पूजा भी छूट गया। तीन चार रोज से उसी का चिंतन करते रहा। ये काम ऐसी है ना कि बड़े बड़े को मुग्ध कर देती है। मुग्ध का मतलब कि मुह धातु वैचित्र्य अर्थ में है। जब काम जीवन में आता है तो हमारा चित्त वैचित्र्य, वैचित्र मतलब विविध प्रकार के उसी के रूप का श्रृंगार के आकार प्रकार के चिंतन में डूब जाता है। भगवान शंकर ने देखा चार रोज हो गए अभी तक सुंदर नहीं पधारा, क्या कारण है। स्वयं ही भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके घर जाते हैं। भगवान शंकर के आते चरणों में गिर जाता है। उसने कहा यदि मुझे परवाह नहीं मिलेगी तो मैं भूखे प्यासे शरीर को छोड़ दूंगा। अब क्या करे, जैसे अर्जुन ने कहा ना कि हमें अभिमन्यु का दर्शन कराओ, मेरा बहुत प्यारा पुत्र है। पूरा गीता ज्ञान सुनने के बाद भी, जैसे कभी कभी आकाश में बादल सूर्य को ढक देते हैं, अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। फिर भी महाभारत के बाद अर्जुन एक बार प्रार्थना किया, आप कृपा करके एक बार मेरे लाडले अभिमन्यु का दर्शन करा दो, उससे कुछ बात कर लो। जब वहां गए तो अभिमन्यु ने कैसा सत्कार किया, एक तमाचा जड़ दिया, बोला कि कितने बार तू हुआ, मैं हुआ, बाप बेटा, इस संसार का कोई अंत ही नहीं, और गीता ज्ञान सुनने के बाद भी तुझे लगता है कि मैं तेरा बेटा, तू मेरा बाप, या ज्ञान अभी तक गया नहीं। वह तुरंत लौटे। ऐसे ही यहाँ सुंदर के जीवन में घटना घटी। सुंदर ही भगवान के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और मैं जीवन में केवल एक ही चीज आपसे मांगता हूँ। अभी तक हमने कुछ भी नहीं मांगी थी, वह यह है कि हमारा परवा से ब्याह करा दो। अब जिद ठान लिया, इसे कोई बच्चे जिद करते हैं ना। भगवान शंकर बहुत समझाए कि देख इसमें कोई रस नहीं, आनंद नहीं। बोला कि कुछ भी हो, एक बार बस, केवल एक बार मेरा ब्याह करा दो, इसके बाद मैं आपकी पूर्व सेवा करता रहूंगा। बोले ठीक है, जब तेरा यही आग्रह तो तेरा ब्याह करा देते हैं, पर बाद में रोना नहीं। बोला महादेव मैं सब संभाल लूंगा, एक बार ब्याह मेरी हो जाए, जैसे नारद जी ने कहा था ना भगवान विष्णु से। उधर भगवान शंकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर अर्धरात्रि में परवा के घर पधारते हैं। वहां जाकर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो। परवा खोलने गई तो उसकी मां ने रोक दिया कि रुक जा, मैं देखती हूं कौन है। उसकी मां ने कहा कि जिसकी तू याद करती है शायद वही पधारा होगा, पर मैं देख लूं कौन है। परवा आई तो पूछी तुम कौन हो, तो भगवान शंकर जो ब्राह्मण वेश बनाकर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं हूं तेरा गुरु पुजारी मंदिर का। और इतनी रात्रि मर्द रात्रि में कैसे पधारे, चार पांच घंटे के बाद स्वयं मैं आपके मंदिर में आती। बोले कुछ विशेष काम था। परवा की मां ने कहा कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अर्धरात्रि में किसी घर पधारना इस तरह। बोले इसकी तो चिंता छोड़, मैं विशेष काम से आया हूं। बोले काम बताइए। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुंदर के साथ तेरी कन्या परवा का ब्याह होना चाहिए, और बड़ा अच्छा ये संयोग है, सुंदर भी चाहता है, तेरी कन्या परवा भी उसको चाहती है। परवा को जब बुलाया तो परवा ने कहा कि ब्याह इसी शर्त पर होगी जब साक्षात भगवान कह दें कि ब्याह होवे, जो आपके कुल देवता मंदिर के जो भगवान शंकर हैं, वे आकर स्वयं जब कहें तब विवाह होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा चिंता मत कर, बस थोड़ी देर में वे भी आएंगे। इधर जो है भगवान शंकर बाहर के दरवाजा बंद हुआ, पांच मिनट के बाद शंकर थे ही आ गए। बोले कि देख हमारा आशीर्वाद है, तुम दोनों अपना नया जीवन प्रारंभ करो। पूरे गांव में सपना दे दिया कि सुंदर परवा का ब्याह होना चाहिए। प्रातः काल होते ही अपना विधिवत दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आप जानते हैं ना कितना सुख होता है, एक साल के अंदर पूरा सुख समाप्त, आकाश उड़ जाता है। कई लोगों सबने पूछा, ऐसी बात नहीं। तो विवाह हो गया, विवाह होने के बाद कुछ दिन के बाद सुंदर को अपने गलती वाला पश्चाताप हुआ। अब विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी आएगी। पहले तो आपको अकेले की जिम्मेदारी थी, वो केवल इतनी थी कि आपको बस कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, पर्याप्त है। परंतु विवाह होने के बाद पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, महावीर हैं, बलवान हैं, हम लोग तो भगोड़े से संसार से। हमारे कैलाश के दशम पीठाचार्य कहते थे कि सन्यासी लोग हम लोग भगोड़े हैं, हम लोग जिम्मेदारी संभाल न पाए तो छोड़कर सीधे आ गए। आप लोग महावीर हैं। इधर जो है सुंदर ही पछताने लगा, जाकर भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा, तो हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने ब्याह कर लिया, अब जो है समय से आपकी प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। अब पत्नी कहते कि ये करो वो करो, ये भी झमेला खड़ा हो गया। जब विवाह हो जाएगी तो पत्नी की बात सुनना ही पड़ेगा। आप माता पिता की बात इनकार कर सकते हैं, काम चल जाता है, माता पिता सहन कर लेंगे, पर श्रीमती सहन नहीं करेंगी, वो तो बार बार कहती रहेंगी। अब बेचारा रोने लगा। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता की बात नहीं, कुछ समय के बाद तेरा उद्धार होगा। इधर एक दिन अजीब घटना घटी। सुंदर को भगवान ने कह दिया कि तू चिंता छोड़, जब भी तुझे समय मिले नहाकर बिना नहाकर तो मंदिर में आकर के अपने नए स्तोत्रों से मेरा स्तवन किया कर। एक दिन सुंदर जल्दबाजी में, समय बहुत अधिक हो गया था, बिना नहाए ही मंदिर में प्रवेश करके आंख बंद कर स्तुति गान प्रारंभ कर दिया। बस्त व्यस्त व्यस्त थे, मुख में अभी पान की समझो की लालिमा थी, आंख में कीचड़ थी। मंदिर का रक्षक जिसका नाम था वीर मित्र, वह दूर से देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। बोले कि कैसा धूर्त है, बिना नहाए धोए मुख में पान चबा रहा है और कपड़े अस्त व्यस्त, आंख में कीचड़ है और आंख बंद करके स्तुति शुरू कर दिया। अपने हाथ में परसू लेकर दौड़ा, बोला कि जल्दी निकल नहीं तो तुझे काट डालूंगा। अभी जब रक्षक दौड़ा तो डर के मारे सुंदर जो है कपाट अंदर से बंद कर लिया। जब कपाट बंद कर लिया, भगवान को पकड़ लिया कि क्षमा करे हमसे भूल हो गई, या आपका द्वारपाल मुझे मार डालेगा, दरवाजा खोलूंगा तो आप मुझे सद्बुद्धि दें। भगवान शंकर ने अंदर से कहा कि वीर मित्र तू चिंता मत कर, ये हमारा अनन्य सखा है और भक्त भी है और हमारे आदेश से इस प्रकार से मंदिर में पधार रहा है, इसलिए मंदिर तुम्हारा पवित्र नहीं हुआ है। इतना सुनते ही द्वारपाल और आग बबूला हो गया। बोला कि आप जगत गुरु कहलाते हैं, आप संसार के शासक हैं, नियमन करता है, और आप ही जब ऐसे धूर्तों को मंदिर में बैठाएंगे जो कि माता जी अंदर बैठी है और आप अकेले हो, तीसरा कोई है नहीं, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? तुम दोनों जल्दी से बाहर निकल आओ, अभी सुबह का समय है। भगवान शंकर को भी डांट दिया, अभी निकलो। देखो भक्तों की ऐसी जो है ना प्रतिभा होती, प्रभाव होता है। ज्ञानी नहीं डांट सकता है, पर भगत भगवान को जैसा चाहे वैसा नचा सकता है। गोपियां तो भगवान को पाव भर छांच में नचाती थी, जिससे सारा दुनिया नाचता है उसको नचा रही गोपियां। यहां पर भी भक्त ने कहा कि आप भी बाहर निकल आओ, क्योंकि मंदिर आपने शुद्ध कर दिया, हमें सफाई करनी पड़ेगी। अब जो है उत्तर दिशा से दरवाजा खुल गया, भगवान शंकर की पिंडी मंदिर के बाहर स्थापित हो गई और सुंदर वही से तेजी से भगा, भागते भागते वहां शब्द ने गांव पहुंच गया। इधर जब देखा वीर मित्र कि दरवाजा पूरब का बंद है, उत्तर दरवाजा खुल गया और शिवलिंग भी बाहर स्थापित हो गया, उसके मन में उस भगवान के प्रति बड़ी नफरत हो गई कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं और अपने भक्त के लिए, मित्र के लिए इन्होंने दूसरा दरवाजा खोल करके और बाहर भगे। उसने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं इस जो यहाँ के देवता कमलानाथ हैं, कभी पूजा न करूंगा न दर्शन करूंगा, बड़ी कभी यहाँ पर प्रवेश भी नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से कहीं बाहर चला गया और कुछ दूर जा करके छोटा सा मंदिर बना करके वही पूजा शुरू कर दिया। इधर भगवान शंकर अपने भक्त की परीक्षा के लिए एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं कि सही में इसने जो प्रतिज्ञा किया है वह अटल है कि नहीं। भगवान परीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। उसका नियम था कोई भी यदि द्वार पर आए तो उसका चरण धो करके और उसको भोजन कराना, पर एक शर्त था, वह पूछता था कि आप कहां से पधारे हैं। यदि बोल दे कि मैं कमलानाथ के यहां से आया हूं तो सीधा पैर भी काटता था, ये भी नियम था। ये बाएं हाथ में परसू रखता था, दाएं हाथ से पैर धोता था और अपने पत्नी को लगा रखा था जल गिराने के लिए। तो पत्नी बहुत चतुर थी, पत्नी पहले ही सबको पूछ लिया व्यागतों से कि आप यदि कमलानाथ पुर से आए हैं तो झूठ बोल देना, कहीं और का बता देना, अन्यथा हमारे पति देवता आपके पैर काट डालेंगे या चले जाना। अब ये जब ब्राह्मण पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि आप यदि कमलानाथ पुर से आए हो तो झूठ बोल देना या चले जाना, नहीं तो हमारे पति देव पैर काट डालते हैं। इस ब्राह्मण ने कहा कि देख देवी, मैं तो कमलानाथ पुर से आया हूं, मैं परम सही हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे जोर से भूख भी लगी है, मुझे भोजन भी करना है और तेरे पति देवता बड़े अच्छे शिव के भक्त हैं, मैं बिना भोजन किए नहीं जाऊंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा। अब पत्नी घबराई, पत्नी ने चालाकी किया, परसा को छिपा दिया दूर। जैसे ही आए पैर धोने लगे पूछे कि आप कहां से पधारे हैं, बोले कमलानाथ पुर से आया हूँ। बस सुनते ही वीर मित्र आग बबूला हो गया, बोला कि परसा लाओ इसका पैर काटते हैं अभी। अब परसा डोले मिले ही नहीं कहीं, तो डंडा उठाया, बोले किसी से पूजा करे भगवान शंकर। ब्राह्मण बेश में भगे पीछे पीछे और ये डंडा लेकर के धनुष बाण पीछे पीछे दौड़ रहा। भगवान शंकर भागते भागते कमलानाथ क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो दूर से ही धनुष बाण से अनुसंधान शुरू कर दिया, मारने लगा। भगवान शंकर भी बाण चलाने लग गए, भयंकर संग्राम। कि भगवान शंकर ने देखा कि अपने प्रतिज्ञा पर अटल है, एक तरफ भगवान शंकर का नाम भी लेता, दूसरे तरफ कहता है कमलानाथपुर से कोई भी आएगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अंत में भगवान को हार करके वही दर्शन देना पड़ा। देखो भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों के भय को दूर करते हैं, इसलिए इनका यह सार्थक नाम है भुवन भय भंगव्य सनिना। यदि आपको संसार से भय लगता हो, मौत से भय हो, कामना से पीड़ा हो, तो अपने कामना को यदि आप भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करेंगे तो वह कामना नष्ट हो जाएगी, आत्म काम हो जाएंगे, परिपूर्ण काम हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति की उपलब्धि होगी। शेष कल विचार करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Tatva Jigyasu Sajjano Matao Behano. Hum log Vaidik Shanti Paath ke upar charcha kar rahe hai. पाठक्रम से छठे शांति पाठ के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं, जो सामवेद के अंतर्गत है. सामवेद की केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के अध्ययन करते समय इसका पाठ किया जाता है. भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेदानाम सामवेदोस्मि. वेदों में सामवेद मैं हूं. ऐसा जो सामवेद के अंतर्गत ये मंत्र पाठ है. और विघ्न की निवृत्ति के लिए इसका पाठ किया जाता है. कल हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ शुरुआत की, सामान्यतः विचार किया. विशेष रूप से यदि कहे तो यही कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, विघ्न है, उसकी जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम उस ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकते हैं. परांचि खानि व्यत्रिणत स्वयंभु तस्मात् परां पश्यति नांतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनमेक्षदावृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्. स्वभाव से यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी इंद्रिया है वो बहिर्मुखी है, बाहर की ओर देखती है. परांचि खानी परांग पश्यति इति परांचि, जो बाहर का ही देख सके. देखे हम चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान करते हैं वो बाहर का ही कर दे. चक्षु के द्वारा देखते हैं तो क्या देखते हैं? यही रूप देखते हैं. कान के द्वारा यदि सुनते हैं तो बाह्य शब्द को ही सुनते और चखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं तो बाह्य विषय को ही स्पर्श करते हैं. हमारी इंद्रिया जिस ओर अभिमुख हो जाती है तो हमको उसी का लाभ मिलता है. अब यहां लाभ लेना है ब्रह्म का, तो ब्रह्म बाहर है या अंदर है बताओ? अंदर है. तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करनी पड़ेगी. अब स्वभाव है बाहर की ओर जाने का, और बाहर की ओर जाने का स्वभाव कोई आजकल का है क्या? न जाने करोड़ों जन्मों से है. बाह्य शब्द, बाह्य स्पर्श, बाह्य रूप, बाह्य रस और बाह्य गंध का ग्रहण करने का ही जिसका दृढ़ अभ्यास है, अब जो है इस मनुष्य जन्म में हमने ये पाया कि संसार से, सांसारिक लाभ से ब्रह्म का लाभ है, वही सर्वोत्तम है और उसी को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर है। तो फिर उस ब्रह्म लाभ को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करनी पड़ेगी। और जो धीर पुरुष अंतर्मुखी इंद्रियों को करते हैं, वही अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। और जो बहिर्मुख है वो तो बाह्य संसार में दुख पाते ही है, किंतु यदि अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करनी है। सबसे बड़ा विघ्न यही है कि इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी है। यदि आप बाहर को जाने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं है, किंतु जैसे ही आप चाहे कि अंतर्मुखी हो और परमात्मा की ओर अभिमुख हो तो बड़ा कष्ट होने लगता है। देखिए, जो कभी सत्संग में नहीं आया है उनको कहे कि आप चलिए एक घंटा बैठना, तो वो उनको बढ़िया से कुर्सी में बिठाइए, वो छटपटाने लगता है कि यहां कैसे आ गए। कुछ खाने पीने की बात करते, कुछ घूमने फिरने की बात करते तो मजा आता। अब ये क्या है, इसलिए वो छटपटाने लगता है क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है। इसलिए ये जो विघ्न है, उस विघ्न की निवृत्ति के लिए यहां प्रार्थना की जा रही है देवता से, परमात्मा से, ईश्वर से, ताकि ईश्वर की सहायता से हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करें और आत्म तत्व का दर्शन करें। इसलिए शांति पाठ का उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि केनोपनिषद पढ़ते समय ये जो सामवेदीय शांति पाठ है उनका पाठ किया जाता है। परंपरा यह है कि जो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं उस उपनिषद में जो मंगल पाठ है उनका पाठ आदि में किया जाता है। तो अब देखिए, केनोपनिषद में जो परमात्मा का प्रतिपादन है वो बड़ा गूढ़ है, और जैसा परमात्मा का और ब्रह्म का प्रतिपादन केनोपनिषद में है वो दुर्लभ है। बिल्कुल परमात्मा का नजीक से यदि प्रतिपादन है तो केनोपनिषद में है, एकदम नजदीक लिए मुमुक्षु को ले जाते हैं वो। लेकिन विडंबना यह है कि वहां पहले ही कहा न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनः, कथम एतद् विजानीयाम यथा एतद् अनुशेष्यात्। ब्रह्म का दर्शन कराना, अब दर्शन करने के लिए हमारे पास ये चक्षुर इंद्रिय ही है और तो कोई जरिया नहीं है। और वहां पहले ही कह दिया कि न तत्र चक्षुर गच्छति, अब बताओ उसका दर्शन चक्षु से संभव नहीं है। और हमारे पास जो है वो जरिया है वो क्या है, यही चक्षु है। किसी चीज को देखना है तो चक्षु के द्वारा ही देख सकते हैं, और तो कोई साधन ही नहीं है। और ब्रह्म का दर्शन करना है तो ब्रह्म का दर्शन चक्षु से कहते हैं नहीं हो सकता है। और चक्षु से अभिप्राय है ज्ञान इंद्रिया। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है चक्षु से दर्शन न हो सके, कान से तो श्रवण तो हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष पांच प्रकार से होता है। सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि जो आंख से दिखे उनको ही प्रत्यक्ष मानते हैं, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन पांच प्रकार से होता है। आंख से जो होता है उनको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, और कान से भी प्रत्यक्ष होता है, त्वक इंद्रिय से, घ्राणेन्द्रिय से और रसना इंद्रिय से भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं बताओ। मैं जो बोल रहा हूं उनका प्रत्यक्ष आप किससे कर रहे? कान से। और बढ़िया बढ़िया जो भोजन उनका आस्वादन, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये कड़वा है, तीता है वगैरह, वो जो दर्शन है वो किससे कर दे? आंख से होगा? नहीं, वो रसना इंद्रिय से होगा। और सुरभि और असुरभि दो प्रकार की जो गंध है, उस गंध का ग्रहण, गंध का प्रत्यक्ष किससे करेंगे? नासिका से, प्राणेन्द्रिय से करेंगे। इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो प्रत्यक्ष का विषय है, उनको प्रत्यक्ष करने के लिए पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांचों ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष होता है। इसलिए यहां चक्षु का जब निषेध किया कि चक्षु के द्वारा उनका दर्शन नहीं हो सकता है, तो ये मानना होगा कि चक्षु से अतिरिक्त और जो चार ज्ञानेन्द्रिया है उनकी भी प्रवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि चक्षु आदि इंद्रियों में, पांच ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु श्रोत्र से भी ज्यादा प्रधान है। यद्यपि श्रोत्र भी प्रधान है किंतु श्रोत्र की अपेक्षा भी चक्षु प्रधान है, इसलिए चक्षु का जब निषेध हो गया तो पांचों ज्ञानेन्द्रियों का निषेध स्वतः समझ लिया जाता है। तो यह अर्थ हुआ कि यह ब्रह्म का दर्शन पांचों ज्ञानेन्द्रियों से हो नहीं सकता है। तो फिर आप कहेंगे कि तभी इंद्रियों की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, अभिप्राय यह है कि पांचों ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जैसे शब्दादि विषयों का प्रत्यक्ष होता है ना, वैसे ब्रह्म का दर्शन नहीं होता है, यह अभिप्राय। क्योंकि ब्रह्म है वो बाहर नहीं है किंतु अंदर है। आप कहेंगे कि बाहर भी तो सर्वत्र तो कहते ही है स्वामी जी, अंदर होने का अभिप्राय है कि साक्षात्कार अंदर होता है, बाहर होते हुए भी बाहर उनका साक्षात्कार नहीं होता है, साक्षात्कार अंतकरण में होता है। इसलिए ये जो ज्ञानेन्द्रिया है वो ज्ञानेन्द्रिया के द्वारा ब्रह्म का दर्शन ऐसे होगा कि वो चक्षुरादि इंद्रियों का भी वो अंतरात्मा है। इसलिए चक्षुरादि इंद्रियों की भी आवश्यकता है, ऐसे समझ लो। एक अंधा व्यक्ति है और एक पंगु है, जो दोनों पैर से सही है वो देख नहीं सकता है, और पंगु है वो देख सकता है किंतु चल नहीं सकता है। वो दोनों जो है एक हो जाए एक दूसरे के साथ लेकर के, तो वो चल भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। तो जिसको देखना है, जाना है, तो वो पंगु का साथ ले तो वो काम उनका हो जाएगा। यानी जो देख सकता है पंगु वो दोनों पैर सही है किंतु देख नहीं सकता, उसके कभे ऊपर बैठ जाए तो वो उनको पंगु को भी गंतव्य स्थान पर वो भी पहुंच जाएगा और जो नहीं देख सकता है वो भी पहुंच जाएगा। वैसे ही ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सीधी सीधा दर्शन नहीं हो सकता है, किंतु ये ज्ञानेन्द्रिया जिसके द्वारा देख सकती है वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म दर्शन के लिए चक्षुरादि इंद्रिया की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए कहा यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। कहा जो चक्षु के द्वारा जिसको आप देख नहीं सकते, किंतु कहा येन चक्षुंषि पश्यति जिसके द्वारा, अर्थात कि जिसके रहते हुए ये जो हमारी चक्षुर इंद्रिय है वो रूप दर्शन में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म। देखो उपनिषद कहती है तद एव वो ही ब्रह्म है, न इदम यद इदम उपासते। जो बाह्य है इंद्रियों का विषय है वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करना जरूरी है, तभी ये सामवेदी केनोपनिषद में प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसका दर्शन हो सकता है। इसलिए यहां पर पहले ही कहा इस शांति पाठ में ये ब्रह्म दर्शन के लिए इंद्रिया, इंद्रिया क्या हमारा पूरा कार्यकरण संघात वो तद अनुकूल हो, इसलिए प्रार्थना की गई। ममांगानि वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम आप्यायन्तु। देखिए ये जो शांति पाठ है ना, इनके आप सात वाक्य बना दीजिए और एक एक को पकड़ेंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सात वाक्य बना देते हैं हम। देखो पहला वाक्य है ममांगानी वाक प्राण चक्षु

मम अंगानी, मेरे जो अंग है। देखो कौन कौन से अंग है वो यहां पर गिना दिए गए। वाक आप्यायन्तु, मेरी जो वाणी है, वाणी से उपलक्षण मान करके पांचों कर्मेंद्रिय ले लीजिए। तो पहले ही मुमुक्षु इस प्रकार की यहां पर जो है प्रार्थना कर रहे, भावना कर रहे कि मम वाक आप्यायन्तु, मेरी जो वाणी है वो आप्यायन्तु, पांचों कर्मेंद्रिय है वो आप्यायन्तु। आप्यायन्तु का अर्थ कर रहे ब्रह्म ध्यान अनुकूलतया वृद्धिं प्राप्नुवन्तु, यानी कि मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। अब कर्म इंद्रियों से क्या होगा? सबसे पहले देखे कर्म इंद्रियों की बड़ी आवश्यकता है, और कर्म इंद्रियों में सबसे पहले वाणी है। वाणी है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल कब हो सकती है? क्या वो वाणी कोई ध्यान थोड़ी नहीं कर सकती है? आप्यायन्तु का अर्थ तो है ब्रह्म ध्यान अनुकूलतया वृद्धि प्राप्नुयन्तु। तो वाणी से कोई ध्यान होगा? नहीं। देखिए यदि वाणी का जो अपना कार्य है, वाणी को जो करना चाहिए, वाणी के द्वारा जो करने के लिए बताया गया, यदि वो हो तो विक्षेप का अभाव हो जाएगा। जैसे हम वाणी से सत्य बोले तो फिर हमारे मन में ये कभी दोष नहीं आएगा, हमारा मन बिल्कुल निर्दोष हो जाएगा कि भाई मैंने झूठ नहीं कहा। देखिए यदि किसी बात का किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है और वो आरोप गलत है तो वो जो व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता है, वो ये निश्चय मान करके चलता है कि मैं तो सही हूं, मैंने कोई झूठ बोला नहीं है, तो मैं छूट ही जाऊंगा। और जो झूठ बोला है और कहता है कि मैंने नहीं बोला है तो ठीक है, बाहर से तो बोले किंतु उनकी अंतरात्मा तो उनको डसती रहेगी, अंदर विक्षेप जरूर होगा कि क्या होगा, न जाने मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वाणी के द्वारा सत्यवदन प्रथम आवश्यक है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वितते देवयानः। और आत्मा, आत्म प्राप्ति में साधन भी है सत्य। सत्येन लभ्यः तपसा एष आत्मः, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। इसलिए वाणी का सत्यवदन प्रथम आवश्यक है। इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात्, सत्यम प्रियम सत्यम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। व्यवहार में भी सत्य तो वो यदि वाणी के द्वारा हम सत्यवदन कर रहे तो वो जो वाणी है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल मानी जाएगी। सत्य बोलना वाणी का तप है। देखो तप की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तप क्यों किया जाता है? कि तप से तपा हुआ है वो शुद्ध हो जाता है। देखिए सोने को आप जितना तपाएंगे उतना वो शुद्ध होगा, वैसे ये जो

0: कर्म इंद्रियों के द्वारा तप किया जाता है। तो वाग इंद्रिय का तप यही है, जैसे गीता में भगवान ने कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चेव वांग्मयम तप उच्चते, ऐसा भगवान ने कहा। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलना जो सुनने वाले को उद्वेग न करे। हम बोले और सुनने वाले को उद्वेग हो जाए तो वो वाणी का तप नहीं है। अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय और हित, तीनों साथ में हो, सत्य भी हो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो, ऐसे वाक्य का उच्चारण करना ही वाणी का तप है। देखिए बिल्कुल मौन हो जाना वो वाणी का तप नहीं है। लोग सोचते हैं कि बोलना बंद कर दो, बोलना बंद करना वाणी का तप नहीं है, किंतु सत्यम प्रिय और हितकारी बोलना है वो वाणी का तप है। देखिए यदि मौन हो जाने मात्र से ही जो वाणी का तप हो जाता, आचार्य शंकरानंद जी कहते हैं तो पशु भी मौन हो जाता, पशु हो जाते हैं, किंतु वो यथार्थ तप नहीं है। यद्यपि बिल्कुल जो असद अभिभाषण कर रहा है उनके लिए तो वो भी आवश्यक है, गलत बोल रहा है इसके वजह यदि नहीं बोले तो ही वो अच्छा है, किंतु इससे आगे यदि कहा जाए तो वाणी का तब वो है अनुद्वेगकारी वाक्य का उच्चारण, और वो उच्चारण सत्य प्रिय और हितकारी हो। अब वो सत्यम प्रिय और हितकारी वाक्य क्या हो सकता है, तो कि स्वाध्याय व्यसनम, ये वेदांत वाक्य है वो सत्य है प्रिय है और हितकारी है, उसका उच्चारण। हमने इससे आगे कुछ न हो सके तो उपनिषद का पाठ करते रहना ही, समझ लो कि वाणी का वो तप है। उपनिषद का पाठ करते रहना वो वाणी का तप है। यदि वो पाठ होता रहे तो वो जो पाठ है वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, बताइए? अनुकूल है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम पाठ करते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्या मत आए समझ में, पहले दफे जैसे करते ही समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है तो जैसे बैठे ड्राइविंग सीट के ऊपर तो तुरंत थोड़ा ना वो सीख जाता है, धीरे धीरे धीरे अभ्यास करता रहता है तब जाकर के वो उसमें उनका प्रावीण्य आ जाता है। फिर वो ड्राइविंग करते करते समय बाद भी करता रहता है और उनका ध्यान आगे की ओर रहता है। इसलिए पाठ करते ही रहना, गीता का पाठ करते ही रहना, उपनिषद का पाठ करते ही रहना, ब्रह्म सूत्र का पाठ करते ही रहना, ये वाणी का तप है। इससे वाणी है ना वो ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाती है। और यहां भावना यही की जा रही है, मम अंगानी, उसने सबसे पहले बताया वाक आप्यायन्तु, ब्रह्म ध्यान के अनुकूल मेरी वाणी हो जाए। ये वाणी का सामान्य तप तो यह है कि हम पाठ करते रहे, कभी पाठ को छोड़े नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya.
3: You are listening to Shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: इति अष्टमं काण्डं समाप्तम्।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल म्यूजिक। In this, you are about to listen Veda Mantram. The title is Shiva Tandava Stotram, presented by Vedamantram.com team. Om Namah Shivaya.